0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

نازاں نہیں فن پر مگر نصری

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खे भेटा पेश कई। कतरी वज़ीर आज़म चयो त सिफारती कोशिशनि खे अॻिते वधाइण में शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल अहम किरदार अदा कयो। उमीद त अहिड़नि क़दमनि सां चिटादार अमन क़ाइमु थींदो। वज़ीर आज़म चयो त लाॻापियल धुरनि विच में जल्द अन मुआदो थींदो।

सूबनि पारां मर्कज़ जे मदद करण ते थोराइता आहियूं। उहा सहूलियत ईंदड़ 10 सालनि ताईं जारी रहंदी। हाणे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरफ़ वञणो पवंदो। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत सुठो कम करे ॾेखारियो आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाणे वारे वज़ीर चयो त बजट में 70 अरब रुपियनि जो वाधो सब्सिडी ऐं पघारदार तबिके खे रिलीफ ॾिनो आहे। ज़रई मशीनरी तां कस्टम ड्यूटी ख़तम कई। तामीराती शोबे तां बि टैक्स घटाया आहिनि। वफ़ाक़ी बजट पघारदार तबिके सनअतकारनि ऐं एक्सपोर्टर्स लाइ आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाणे वारे मुमलिकती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी चयो त समूरनि शोबनि तां भार घटाइण जी कोशिश कई आहे। हीउ बजट पंहिंजो घर ठाहींदड़ जी बजट आहे। घटि पघार खणंदड़ तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो। हिन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारियुनि एक्सपोर्टर्स ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज़ तां बि टैक्स घटायो आहे। बजट सां सनअतनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा।

0: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून। और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर, उस वक्त मैंने मिसाल की जमहूरियत की, एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल की जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाल के मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज अच इट इज नेवर टू लेट, आए बैठे मैं बातचीत के लिए तैयार हूं।
1: वजीर आजम एक भेरो बीहर अपोजिशन के मिसाक मईशियत और मिसाक जमहूरियत के गालन की दावत दई छी। कौमी असेंबली में खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चे तो सियासत और नजरियो सभी जो पहंजो है, पाकिस्तान आए तो सब आयु असा सब भाईर आय, को भी जेड़ो ना पेरे भी अपोजिशन लीडर की हैसियत में मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशियत लाइ हो, पर मुझे खुलूस से बदल आछ के रद्द कर वो, हाँ भी दावत दिया तो अचो वेह अगत बदो चैनी सूबन के एक जेतरी तरक्की मुझो मकसद है। कानून लागू कदड़ इदारा मुल्क के अमल लाय डी रात कम कर रहा है, संदन खिदमत कुर्बानन जो एतराफ और एहतराम थे घुर्जे। अपोजिशन की भी हुकूमत के गर्जी मामलों के अगत बढ़ाने की आच, कौमी असेंबली में बजट से गालाइंदे महमूद खान अचकज़ई चयो तो गलतियों के सुधारे सकजे तो, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मजबूत करे एक माहिदो करे तो जी सियासी जमायतू एक बे जू टंगू न छिकन, फेडरेशन सूबन के पैसा दींदी है अवां सूबन का वरता है, पीटीआई बानी ते एतरी सख्ती न कयो एक बे के जेलन में विझण से कुछ न थींदो, पीटीआई बानी से मुलाकात थींदी छा थींदो।

पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी से मुलाकात करण जो मुतालबो कौमी असेंबली में गालाइंदे बैरिस्टर गोहर सियासी इस्तेकाम से ही मुआशी इस्तेकाम बजट में गरीबन लाए कुछ भी ना बिजली की कीमत शेटिंग न बो कुछ सस्तों

एफबीआर मां सिफारिश कल्चर के खत्म कर छो है। एफबीआर में अरबे रुपयन की करप्शन हुई, रुगो शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपयन जो घपलो हो। सुध समा वाले वफाकी वजीर अता तारण पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पगारदार शख्स शुगर इंडस्ट्री जो बार छो खणे सुधारा कर खंड की सनत मां टैक्स चोरी रोके 60 अरब टैक्स हासिल कर माजी में मुल्की डिफॉल्ट शर्तू लगी हुई। मौजूदा हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम आंदो जो अगते वधी रहा है।

13 अरब टैक्स मां 1100 अरब रुपया रुगो कराची मां गॾु थींदा आहिनि। कराची जे रस्तनि जी हालत ख़राब आहे। 18 सालनि खां सिंध जे करप्ट हुकूमत क़ाइमु आहे। क़ौमी असेंबली में बजट ते ॻाल्हाईंदे MQM अॻवान फारूक सत्तार चयो आहे त वज़ीर आज़म जी तक़रीर में कराची जो ज़िक्र ई न आहे। शहरनि खे सिधी रीत फंड ॾिना वञनि। 2100 अरब सिंध खे ॾिना पिया वञनि। पैसा सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जे मेयर्स खे ॾिना वञनि। 26 ऐं 28 तरमीम खे सपोर्ट कयो। असांजे वारे ते रेड लाइन अची वई। मकानी इदारनि खे ख़ुदि मुख़्तियार बणाइणो पवंदो। रुगो कराची न पर समूरनि शहरनि खे सिधी रीत फंड ॾिना वञनि।

0: भेण में जवाबदार कारे तोहमत हणी परणियल भेण के कतल कर छो। ज़ुल्क़ार कॉलोन में जवाबदार दिलबर डेपर फायरिंग करे पैंजी वडी भेण सुफिया ज़ाल असलम डेपर के गोलियों हणी कतल कर छो। पुलिस वाके बाद जवाबदार के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस कार्रवाई करे जवाबदार के गिरफ्तार करे वरतो।
1: पंहिंजो मामो इकबाल उर्फ बालू हिकु किन्नर माण्हू आहे। हर हिकु थाणे ते हुनजे पार आहे। घरारी खे वठी मुंहिंजी नंढड़ी खे भत जो दिलाबो ॾेई हथनि मेंदियूं हणाए बहानो करे हलूं था शादी ते। उते मुंहिंजी नंढड़ी खे विकिरो करे जलपाणी गुलदार जलपाणी हुन खां पैसा वठ। मुंहिंजी नंढड़ी सां ज़ाती कई आहे गुलदार जलपाणी। मुंहिंजी घर हिकु नंबर त मुंहिंजे कॉल कई ॾे मां रस्ते तो खणी आवां हिते मां खणी आवां त मां पुलिस ॾे वियो आहियां। एस एल एस पीरसण उन माण्हू गिरफ़्तार कराइण सूद माण्हू उहो सूद माण्हू असांजे छॾियानि एस जे माण्हू पैसा वठी चकर आहे। मुंहिंजी छोकिरी नालो शीदा आहे होॾे कुर्बान नालो थियल आहे। हे मुंहिंजी छोकिरी जो पर्चो आहे। हे स्कूल जा मुंहिंजी छोकिरी नवनि सालनि जी आहे। ॾिसो था हे असांखे एस एस पी अपील आहे त असांजो ग़रीब जो हक़नि सां बि कयो वञे।
2: काल कई त वठी आहे शादी जमियो करे मूंखे वठी मथे ॿधी छोकिरी सां जातियूं कराईंदनि। इहा कसम सां कॾहिं ॻाल्हि आहे असांजी नियाणी सां जाती कराईंदई।
3: छोकिरी खे पाण ॾिठो पोइ शादी जो वठी आहे उते चई न खनि छोकिरी खपाए बालू जी भेण मिलोसीं। असांखे को नुक़सानु पियो असांखे को माण्हू ॿियो असांखे का बि ॻाल्हि थी उनजे लाइ ज़िमेदार पुलिस हूंदी।
0: पीर वसण भरिसां जवाबदार पंहिंजे नव वरनि जी भाणेजी खे मुबैना तौर 4 लख रुपियनि में विकिरो करे छॾियो। निगरी सां इजतमाई ज़्यादती जो बि इंकशाफ़। वासन जो एहतजाज ॻोठ महबूब ख़ान मंगरियो। वासण नव वरनि जी निगरी जे पीउ ग़ुलाम रज़ा मंगरियो ॾाॾो अली गुल मंगरियो ऐं ॾाॾे मिस्मात पीरानी एहतजाज कंदे चयो त निगरी खे संदसि सॻे मामे इक़बाल उर्फ़ बालू मंगरियो घुमाइण बहाने वठी वञी रसूलाबाद भरिसां 4 लख रुपियनि में विकिरो कयो। जिते गुलज़ार जलबाणी ऐं बाबू जलबाणी निगरी सां इजतमाई ज़्यादती कई। निगरी वठी फरार थी असां वटि पहुती। फरियाद दाख़िल कराइण बावजूद पुलिस मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ कारवाई नथी करे। बस वारा नोटिस वठनि।

0: de Shiner.
1: मेयर जे मासूम उजाला परवीन जे अगवा के ब महीना मुकमल संदस अमर रोई रोई हाल विञाए छड़िया। ब महीना अग मेयर जे महसर सेंदल पाड़े मां अगवा थियल मासूम उजाला जी बाज़ियाबी लाइ पुलिस रुगो कूड़न दिलासन ऐं आसरन खां सवाइ को बि अमली कदम न खयो। ॿिन उजाला जी बाज़ियाबी लाइ वासन सां गॾु शहरी बि ॿिन महीननि खां सरापा एहतजाज बणियल।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: तंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
0: हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ईरान सां अमन मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ऐलान। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान सां मुआदे ते सयूं थींदे ई आपने हुर्म सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्ति एटमी मवाद जी बाक़ायत बि हासिल करे वठंदासीं। उमीद आहे त गाॾियुनि वारो समूरो अमल जल्द ऐं आसानी सां मुकमल थी वेंदो। असां ईरान ऐं विच ओभर जे मुल्कनि सां गॾिजी कमु करण जा मंतज़र आहियूं। आबनाए हुरमस खुलण बाद जे सेवन मुल्कनि सां गॾु बारूदी सुरंगूं साफ़ करण जो बि कमु शुरू कयो वेंदो। असांजो मुआदो ओबामा जे मुआदो जहिड़ो न आहे। ईरान खे मुआदे एवज़ का बि रक़म न ॾिनी वेंदी।

ईरानी फौज अमरीकी सदर ट्रंप पर अज अमन मुहिदे ते सहन वारी दावा रद्द करे छी। ईरानी पासदान इनकलाब फौज जो चवण है ईरानी मुजाकरात कार जो अचर दिहाड़े कें भी मुहिदे ते सहन न करण बाबत आगाह कर चुका है। सदर ट्रंप सही वारी तकरीबन सालगिरह के करे 14 जून से करण चाहे तो। ट्रंप उन मौके से अलामती अहमियत दई पैं जाती मशहूरी जो प्रोग्राम बनाए रो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरान अमरीका अमन मुहिदो फाइनल थे इम्कान जाहिर कर छो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरान अमरीका अमन मुहिदे के नुकता 24 कलाक में फाइनल थी वेंदा। ईरान अमरीका अमन मुहिदे आगे का वेझो पहुंची चुका हूं। ईरान अमरीका विच में इंदड़ हफ्ते टेक्निकल सतह से गाल पाकिस्तान बिन्ही मुल्क विच में अमन मुहिदे के डिजिटल सहन लाइ तैयारियों करें पो पर पूरा यकीन है अमन मुहिदे खिते में चटादार अमन जो बुनियाद विझ। वजीर आजम ट्वीट अमरीकी सदर ट्रंप पर ही ट्वीट कर छोड़।

ईरान क्रू अमेरिका के शिकस्त थी चुकिया है। ईरान ते हमले मुसलमान में बेदारी जो नो रुख फूके छो इसराइल परेशान आन मुसलमान मुतहद किया नवाज लीग अगवान ख्वाजा साद रफीक चवायत पाकिस्तान अमुन लाइ भरपूर किरदार अदा किया ईरान की जुरत फलस्तीन की हिम्मत ए पाकिस्तान की दानिशमंदी इसराइल की साजिश नाकाम बनाए छी।

0: वफाकी बजट पर खबरदार तबके सनतकारन एक्सपोर्टर्स लाए आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले ममलकती वजीर बिलाल अजहर कियानी चयो आहे त समूरन शोबन तां भार घटाइण जी कोशिश कई आहे। ही बजट पंहिंजो घर ठाहिंदड़नि जी बजट आहे। घट पघार खणंदड़ तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो, हिन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारियुनि एक्सपोर्टर्स ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज तां बि टैक्स घटायो आहे। बजट सां सनतनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा।
1: सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल की जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल की जमहूरियत की तरफ बढ़े, आइए मिसाल के मंच की तरफ बढ़े। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज अच इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं।
0: ऐं वज़ीर आज़म हिकु भेरो ॿीहर अपोज़िशन खे मिसाक मैशत ऐं मिसाक जमहूरियत ते ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त सियासत ऐं नज़रियो सभिनी जो पंहिंजो आहे, पर पाकिस्तान आहे त सभु आहियूं, असां सभु भाइर आहिनि, को बि जहिड़ो न आहे। पहिरीं बि अपोज़िशन लीडर जी हैसियत में मिसाक जमहूरियत मिसाक ख़लूस ते बदल आज खे रद्द कयो वियो। हाणे बि दावत ॾियां थो, अचो वेहो अॻिते वधो। चइनी सूबनि जी हिकु जेतिरी तरक़ी मुंहिंजो मक़सदु आहे। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क जे अमुन लाइ ॾींहं राति कमु कनि पिया। सदन ख़िदमत ऐं क़ुर्बानीनि जो एतिराफ़ ऐं एतराम थियणु घुरिजे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलन फालेज शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: Japan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White H Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White H Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White H Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,

ईरान सां मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। अमरीकी सदर ट्रंप जो ऐलान। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान सां मुआदे ते सयूं थींदी, अब्न हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। उमीद आहे त ॻाल्हियुनि वारो समूरो अमल जल्द ऐं आसानी सां मुकमल थी वेंदो। असां ईरान ऐं विचोबर जे मुल्कनि सां गॾिजी कम करण जा मुंतज़िर आहियूं। अब्न हुरमत खुलण बाद जे सेवन मुल्कनि सां गॾु बारूदी सुरंगूं साफ़ करण जो कमु शुरू कयो वेंदो। असांजो मुआदो ओबामा जे मुआदे जहिड़ो न आहे। ईरान खे मुआदे बस का बि रक़म न ॾिनी वेंदी। ईरानी फ़ौजी अमरीकी सदर ट्रंप जे अॼु मुआदे ते सयुनि वारी दावा रद्द करे छॾी आहे। ईरानी पासदारनि इनकलाब फ़ौज चवण आहे त ईरान पारां ॻाल्हियूं कंदड़ आचार्य जाड़े कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहिनि। सदर ट्रंप सही वारी तकरीब पंहिंजी सालगिरह जे करे 14 जून ते करणु चाहे थो। ट्रंप उन मूंखे अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजे ज़ाती मशहूरी जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे।

0: कोनरी वेझो अदलत शख्स जो अंब के वण में फाहो लगल लाश थ सोरा वाटर वट सिखू कोली जो वण में फाहो लगल लाश मिलो इतला ते पुलिस वाके वाले हंध पहुंची लाश के अस्पताल मुंतकिल किया पुट किशन कुली चौड़ाए वालिद के गुजरल नशो करण का मना कयो तो उन कावड़ की आपघात कयो आए पीर जो गोठ में शहर जो वधण बदमनी खिलाफ थाने अग्न धरणो नारेबाजी शहर जो तो पीर जो गोठ एम्बर पासे वाले इलाक में बदमनी वी वही है सबब मानू गैर महफूज आन कतल ए फुरजा वाकया मामूल बणजी वन हुकूमत अमन बहाल कराए
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-760।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज GAFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।
5: पर चौ पान में छदरु

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8
2: Subscribe to our channel by clicking the subscribe button.

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

खास मटियारी सकरेन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर जनाब आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके कार को फॉलो करके आप ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए मेंटेन भी रख सकते हैं, खूबसूरती को हमेशा के लिए लव भी कर सकते हैं। वो खूबसूरती जो आपको मिलेगी वो हमेशा आपके साथ मौजूद कैसे रहेगी ये आप लोगों को इस प्रोग्राम में पता चलेगा। तो बिल्कुल सी बातें खूबसूरती की होंगी, साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करती हैं जी बहुत ज्यादा वाली। प्रोग्राम में फन होता है, प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होती है, प्रोग्राम में म्यूजिक होता है और बहुत कुछ होता है जो कि आप चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर हो। बिल्कुल जी, सब कुछ बताएंगे लेकिन साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा। नमस्कार, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जा रहे हैं। सो डियर लिसनर्स अंत के हालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीद इन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होते हैं मेरी जान। और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा वाली मस्तियां करते हैं। तो 2 घंटे में आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगी इस उम्मीद के साथ, इस प्यार भरी बातों के साथ साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो बिल्कुल सही, ये बातों के सिलसिले को जरा जो है ना आप लोगों तक पहुंचाया जाता है सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बताएंगे जी, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में बनेगी चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली सिद्रा आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा

नाम सुनते हैं उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है. तो आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक आप सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं.

क्या ही प्यारा कलाम मैंने लिस्ट में लगाया है, और इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दे चलें जनाब, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो, जरा इसी बातें आप लोगों को बताया जाएगा और आप लोगों को जरा जो है ना वो एजुकेट किया जाता है इस मामले में कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, यानी कि नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और नॉलेज भी फुल वाली, हाफ नॉलेज होती है ना वो डेंजरस होती है, तो फुल नॉलेज है ना वो हासिल किया करें और हमारा प्रोग्राम सुना करें ताकि आप लोगों को ये पता चले कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती को कैसे बढ़ाएगा। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम को, जरा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ तो वो जरा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो टॉपिक आज के प्रोग्राम का कुछ इस तरह से होने वाला है, जैसे मैंने कलाम आप लोगों को सुनाया कि दुनिया मतलब की है, ये तो हम हर कोई कहते हैं, ये तो हमने सुना भी है हर किसी से कि आगे से इंसान बोल रहे होते हैं कि दुनिया मतलब की है, हम खुद भी कह रहे होते हैं, हमने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है। तो मुझे जो है ना आपने ये बताना है कि जबकि हर कोई अगला इंसान हमें ये कहते हुए जो है ना हम उसे सुन रहे होते हैं कि दुनिया मतलब की है, तो मुझे जरा आप ये बताएं कि जब सारे लोगों के साथ दुनिया में मतलब चल रहे हैं, हर किसी के साथ ठगियां चल रही है, तो ठगी कर कौन रहा है, ये मतलब निकाल कौन रहा है, वो कौन है जो सच में जो है ना वो मतलब ही है। यानी कि ऐसा तो कोई नहीं कि हमें आखिर किसी ने ये बोला होगा भाई माँ मतलब ही आया, हाँ माँ माणो सन ठगियो कहूँ है, माँ वो इंसान आया जेको मतलब वारो कम कंदो है। सो मुख्य ता यो बुधायो छा तवा के जेको आ यो बुधायणो आ त तवा जी नजर में वो केर इंसान आहे जेको तवा के लगे तो वाकई ही मतलब ही आहे, या फिर जेके माण्हू ज्यादातर ईअं चवंदा आहिनि त दुनिया बाबा मतलब जी थी वई आहे, त वाकई छा उहे माण्हू मतलब ई हूंदा आहिनि। बहुत सारी बातें जो कि आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बहुत सी बातें जो कि आप लोगों के साथ हम कैसा बनती जाइए और मुझे बताएं कि वो कौन लोग

मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, तो जीए लाड़काना FM 88.8 जो है ना हमारा पेज है। अगर आप जीए लाड़काना FM 88.8 सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम के लाइव पोस्ट मिलती है जो है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो की, जिसे आप लोगों ने लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर कर देना है। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद एक प्रोग्राम का हिस्सा है। और बताइए आज के दौर में मतलब ही कौन है, आपको क्या लगता है? ये जो लोग कहते हैं कि भाई दुनिया मतलब की है, अगला इंसान मतलब ही है, ये मतलब ही, तो कैसे हमें ये पता चले कि अगला इंसान मतलब ही, मतलब आपको क्या लगता है बताइए मुझे। और आदिल हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, बताएं कैसे हैं जनाब? लिखते हैं चेहरे ते हमेशा मुर्क हो जाए, जमानो जाने जमाने जा मतलब ही मानो जाने। डिसो डिसो डिसो डिसो जी, वेलकम हो गया आपका। और तमाम गानों चाहिए हुआ ठीक है जी, और कहते हैं अच्छा ठीक है ओके ओके। सैयद फारूक हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद, कैसे हैं? आपको भी वेलकम करते हैं। पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें बहुत ज्यादा वाला। और एम अंसारी लिखते हैं कि मुझ में आज भी वो छोटा सा बच्चा जिंदा है जो रात को रोते रोते सो जाया करता था। सिडो समझे थी ना माँ अन्या बार आया, बिल्कुल माँ समझा दी तो बार नंढा पितगड़ा हुआ हुआ करने वाला। आई तमाम ही चौदह खुश आमदीद प्रोग्राम में शामिल आए हो। मौलाई मुजाहिद बोजदार हमारे साथ मौजूद है। हेलो जवार बचल मोहम्मद शम्पानी भाई हमारे साथ मौजूद है। और ये राजा खान भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, अदा मसफा बल्ली आए ताम उदा की आए हो, खुश चंगा बल्ला। और कहते आज सॉन्ग सुनाइएगा, बिल्कुल मैं अच्छा चले मैं लगाऊंगी आपकी पसंद का गाना। अशफाक अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम अशफाक। और जवार भाई कहते भाजी प्रोग्राम जबरदस्त आए, सलाम सभी दोस्तन के, प्रोग्राम दस जबरदस्त आए, जबकि प्रोडक्ट तवा के बुधाया थी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आई जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन्हन के इस्तेमाल कयो था कौन यो भी तो बुधायो जी खबर पई तो बाबा सोना सोना मानू असाजा जेकी लिसनर्स आन बदिक सोना थी वें जो इस्तेमाल कन पया प्रोडक्ट जेकी उनन के बुधाया वजन था। अशफाक कहते हैं कि को याद कंदे ई विसरी वयो, को विसरी विसरी याद रहयो, को प्यार डई न विसरी वयो, को दर्द डई याद रहयो, बस याद अचे माजी वयो, वक्त हो को गुजरी वयो। वाह वाह वाह वाह। अच्छा मौलाई मुजाहिद बोजदार टूफ चूसल सी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम जी। और क्या कहते हैं, हाँ मैं एकदम से लश पश हूँ। और कहते हैं हमेशा हंसी मुस्कुराती रहें, आप भी हमेशा खुश रहें, बाश रहें। और सईद फारूक कहते हैं स्पेशली माय लाडली आरजे सिद्रा मुस्कान। सियाने कहते हैं कि माँ एक अजीम दर्सगाह है, उस लिए मैंने सोचा है अपने बच्चों के लिए 3 से 4 दर्स का बनाऊं। अच्छा ये अगर आपकी बीवी ने सुन लिया ना, अच्छी खासी आपको कुटकी मिलने वाली। वैसे एक है बीवी आपकी या फिर नहीं, आप अभी से प्लानिंग कर रहे हैं? चले एक तो करें फिर देखी जाएगी आगे की। और उसके साथ साथ जो ना पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है आजकल के दौर में कौन मतलबी है, हाँ बताइए मुझे मैं जानना चाहती हूँ। इसके साथ साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ डायल कीजिए 03 5 7 99 0 और लेते हैं ब्रेक, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनती रहिए हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंटी स्किन बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी। जा रहे हैं

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: हाणे हैरतन खे जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो फालिज, शुगर, कमज़ोरी, ख़ारिश, बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: आप सुन रहे हैं
4: GAFM FM
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुरन जा सवन वरन जा सूरड़ा एक लाज़ में थो लाहे आने एड़ो अल्लाह

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

चुके हैं। और जब माइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र आता है तो मैं तो भाई बाग बाग हो जाती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं जिनमें आप लोगों के लिए यानी कि हर एक इंसान के लिए प्रोडक्ट तैयार है। यानी कि ऐसा नहीं कि अब आप सोचेंगे कि भाई जान मेरी टाइप वाला प्रोडक्ट तो है ही नहीं, हर तरह का प्रोडक्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो जो एक इंसान की नीड होती है ना, मतलब वो सारी चीजें इन्होंने समझ कर और सारी चीजों के ऊपर स्टडी करके फिर ही इन्होंने आप लोगों के लिए वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो है ना वो तैयार किया है। वाइटेश के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे आप इस्तेमाल करेंगे और ना सिर्फ आपकी खूबसूरती बढ़ती है मेरी जान, बल्कि आप लोग बहुत ज्यादा हसीन हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हसीन से मुराद ये कि अगर आपकी स्किन जो है वो रूखी सूखी हो चुकी है, आपकी स्किन डल हो चुकी है, आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो दाने आ चुके हैं, या फिर आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसको लगाने के बाद आप फ्लेक्स कर सकेंगे भाई जान देखो मैं मेकअप नहीं लगाती हूँ। अगर आप भी मेकअप नहीं लगा पाते हैं, गर्मियों का सीजन है और आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट नहीं है, तो भाई वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट सेना बताते हैं कि किस तरीके कार को फॉलो करके आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये कि आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट मौजूद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो अगर हम बात करें वाइटेश ब्यूटी क्रीम की, तो सबसे पहले हम वाइटेश ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो वाइटेश ब्यूटी क्रीम है जो कि नाइट क्रीम है, उसके साथ आपको डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मिल रहा है जो कि एक्नीज के खात्मे के लिए है। यानी कि दाना अगर तमाम चेहरे से मौजूद आयन तो उनकी तमाम खत्म कर सको था, न सिर्फ दाना मजीद आयन ब्यू चीजों बुधाया थे कि वाइटेश लवली क्रीम तमाम जो लाइन मौजूद है। वाइट एसी लवली क्रीम जगह ही फेयरनेस क्रीम आई नाइट क्रीम में फेयरनेस क्रीम में छा डिफरेंस हूं ये बुधाया थी। आई वाइट एस जो साबुन आए तमाम वट, वाइट एस जो फेस वॉश आए तमाम वट, ठीक है। आई लोशन भी आए वाइट एस वारन जो हेयर रिमूवल जो लोशन भी आए, ठीक है। ये तमाम प्रोडक्ट्स आए जगह तमाम की इजीली किथा भी मिली सकन था, तमाम बस पांजे करीबी जनरल स्टोर से वनो था, उतां नालो वठी करे तमाम तलब कयो था, तमाम के नथा मिलन तो उन जो हल भी आए तमाम जे लाए नंबर आए जेते तमाम डायल करे नंबर के उन ते कॉल कयो मैसेज कयो उनन के दसो त बाबा फलानी जगह ते कोन था मिलन तमाम जा प्रोडक्ट अवेलेबल कराए छियो, तो बिल्कुल अवेलेबल कराइंदा। नंबर आ 03157990595 नंबर ते रातो कयो अगर तमाम भी चाहो ता तमाम जे एरिया में मिलन घुर्जन वाइटेश प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सी अगर असा वाइटेश ब्यूटी क्रीम जी गाल कयो तो वाइटेश ब्यूटी क्रीम जेका तमाम जी खूबसूरती के बधाई दिया है। वाइटेश ब्यूटी क्रीम जगह हिकड़ी नाइट क्रीम आए जगह तमाम राजे टाइम इस्तेमाल करी सको ता तमाम जी स्किन के फ्रेश बनाई दी, फेयर बनाई दी, तमाम जी स्किन जी हिफाजत करी और उन सभी चीजों का जकी तमाम जी स्किन के खराब करने में जको ना अहम किरदार अदा करदा है। अगर तमाम जी स्किन ते काफी झुरियो अची वयो आ या फिर डार्क सर्कल्स वधी वया आ या फिर तमाम जी स्किन जका मुरझायल लगे थी, तो तमाम वाइटेश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा, वाइटेश ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल का पोई तमाम जी स्किन सफा फ्रेश थी वेंदी, ग्लोइंग थी वेंदी और तमाम जवान थी वेंदा। छो तो वाइटेश ब्यूटी क्रीम जे अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है। ये सब चीजों एड करे पो वाइटेश ब्यूटी क्रीम के तैयार कयो आहे। वाइटेश ब्यूटी क्रीम सा गड तमा वाइटेश ब्यूटी सोप इस्तेमाल करना या वरी फेस वॉश इस्तेमाल करना, इन बिनी चीजों में जेमे भी तमा कंफर्टेबल है वह चीज तमा इस्तेमाल कयो। अगर तमा साबुन हणो था तो तमा साबुन हणदा, अगर तमा क्रीम हणो था तो तमा क्रीम हणदा। कोड सारा मानू जके मुखे चोंदा ता भाजी असा क्रीम कोन हणदा आ गाल ते सीधी, तो बाबा मुडा भी गाल सीधी, तो ता साबुन ही ता फेस वॉश लगाए दिसो ता सही है। साबुन फेस वॉश तो कॉमन गाल है, हर कोई इस्तेमाल करना, बेसिक नीड हर एक इंसान है। तो तुम अगर क्रीम नथा लगायो तो तुम साबुन फेस वॉश लगाए सको था, ठीक है। ये कुछ अड़ा प्रोडक्ट हूं जो तुम एनी हाउ लगा ही सको था। यानी कि अगर तुम जरूरत है तुम स्किन के जो जरूरत होंगी है बाबा पाजी तुम केयर कदा करो, सेल्फ केयर ढी जरूरी शे है। सो तुम स्किन जो ख्याल रखो, तुम साबुन लगायो, उन फेस वॉश कर वाइटेश ब्यूटी सोप से, तुम वाइटेश जो फेस वॉश लगाए सको था जो वाइटमिन सी से तैयार थियल है, साबुन जो एवोकाडो मिल्क एलोवेरा से तैयार थियल है, ठीक है। ये सब चीजों आज जी तुम खूबसूरती के बधाई दूँ। हाँ असा गाल क्यों अगर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जी, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है उन मानों के लिए तैयार किया है जिनके चेहरे से ना दाना होंदा है, एक्नी आए एक्नी की वजह से तुम अगर परेशान आयो तो बाबा परेशान थियण की का भी गाल कोने का, छो तो मार्केट में डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आयो है जो आयुर्वेदिक फार्मूलो है जो तुम एक्नी से फाइट कर सिर्फ एक्नी न बल्कि तुम्हारे चेहरे से अगर निशानात तुम्हारे चेहरे से कोई कट जो निशान आ, कोई सड़न जो निशान आ, कोई अड़ो निशान आ जो सदन का वी हले पो।

कुछ हुआ है तमाम के छात्र लगे जी दौरे में मतलब यानी कि वो कौन है जो मतलबी है हर किसी से हमने सुना है लोग कहते हैं भाई जमाना मतलबी हो चुका है हाँ जी तो बताएं कौन है मतलबी क्या उसकी ऐसी निशानियां हैं कि हम समझ पाएंगे ये सीए वाला इंसान मतलबी है अगर ये बताइए मुझे जल्दी से और इसी के साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं बताइए साहिल खान हमारे साथ ही साहिल खान वालेकुम अस्सलाम वेलकम कहते हैं कल मैंने आपको बोला था कि खुदा मोहब्बत का गाना चलाइए बिल्कुल मुझे आज याद है आपके लिए गाना लगाएंगे बस आप हमारे साथ मौजूद रहिए ओके जी अब्दुल गफूर कैसर हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफूर कैसर आपको खुश आमदीद कहते हैं मीर बेवस हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून अशफाक कहते हैं उन्हें भी नहीं हुआ जैसे गुजरी हुआ और आबिद आबिद बस आगे का क्या लिखा हुआ ये समझ नहीं आ रहा है सो आबिद आपको वेलकम करते हैं अच्छा मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम मोहम्मद जमान भाई कहते हैं व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो आहो वाह साड़ी नींद चोरी हो गई हुण की करें कुड़िए संडे वाले दिन तो मैं आती हूँ बस जुम्मे को छोड़कर जुम्मा नहीं आती पर संडे वाले दिन तो मैं आती हूँ नींद को गोली मारो एंजॉय करती हूँ

ओगरे किशोर भाई हमारे साथ कहते हेलो हाई अद्दा खुशायो हैप्पी संडे वेलकम प्यारे भाई। उबेद सहतो हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बॉस जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? किशोर भाई कहते हैं टॉपिक हम सब करते हैं, हम सब मतलबी हैं, ये झगड़ा होना चाहिए ये बात एक्सेप्ट करने में। अच्छा उबेद कहते हैं इतना मुश्किल टॉपिक, सच्ची बताएं। सैयद फारूक कहते हैं बाजी मेरे लिए मेरी भी एक फरमाइश है, सॉन्ग सुनाए। ये केड़ो गानो है?

प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटेश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावत से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मैंने आप लोगों से पूछा है, मुझे बताइए मतलब ही आज

पोस्ट को लाइक और शेयर करिए. और सासा सैयद फारूक कहते हैं जो क्लोज होते हैं वो मतलब ही होते हैं. अच्छा, ये नई बात पता चली हमें. और एहसन अरबाड़ी हमारे साथ मौजूद. वालेकुम अस्सलाम एहसन, शाला तानो खुश आयो. नाजिक अली हमारे साथ है वीआईपी शो, थैंक यू नाजिक भाई. और ये ए मंसारी कहते हैं टॉपिक पर जो सेल्फिश है वो ही मतलब ही है. अना परस्त और खुद परस्ती मतलब ही केतरो समझा थो बार थी. अच्छा, मुखे समझायो था सही सही. महानी बनी थी भैया. इकबाल लाशरी हमारे साथ मौजूद है. हेलो इकबाल भाई, कैसे हैं?

अच्छा उबेद कहते ऐं अवां जो टॉपिक त अॼु ॾाढो भलो ऐं मुश्किल बि आहे पर असां बाबा सिधा सादा माण्हू आहियूं त कूड़ न ॻाल्हाईंदासीं थी सघे थो त किथे न किथे असां बि मतिलब ई हुजो ओ इहा ॻाल्हि कई न कम जे ॻाल्हि चलिए अच्छी बात है ये कबूल करना ही बहुत बड़ी बात होती है और उनखां अलावा अच्छा मौलाई मुजाहिद बोजार के टॉपिक अल्लाह ना करिए सिदरा जी आप पर बुरा वक्त आए उस वक्त आपको पता चलेगा मतलबी कौन से लोग हैं मुझ पे बुरा वक्त आया था उस वक्त मुझे पता चला कि मतलबी लोग कौन से थे कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने मेरा साथ दिया बाकी मतलबी लोग सामने आ गए ये तो अच्छी बात है ये बिल्कुल सही बात आपने हमारे साथ शेयर कर दी कि बुरे वक्त आने पर ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम स्वीटी कहती है वेलकम टू शो में भी आ गई शो में क्या बात है वेलकम ओके जी सो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर नहीं आप हमारे साथ शेयर करते जा रहे हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जिनका इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों की खूबसूरती आप लोगों के साथ रहेगी आप लोगों के चेहरे पर ग्लो रहेगा आप लोगों की खूबसूरती जो है वो मेंटेन रहेगी और आप लोगों को जो खूबसूरती मिलेगी वो हमेशा आपके साथ मौजूद रहेगी

अच्छा अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं। सकरण से आप हमारे साथ हैं, क्या बात है। अच्छा उबेद से तो कहते हैं कराची में नहीं है ये क्रीम, बॉस जी क्या करें, कराची वाले लोग परेशान है भाई, कराची में अवेलेबल कराते हैं सबर करें। वहीद वफाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, क्या हाल है आपके। मैं बेहतरीन, आप बताएं कैसे हैं। अच्छा साबिर खान हमारे साथ हैं, हेलो। ओके अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे कहते चंड रखे तो नियापो का जा अन्या हसरतन जा निया था बरन अंदर के आसरा अन्या ताई था रहन असा वक्त जी चीच नाहे छड़ी हलिया जिंदगी एडी नाहे वनी वाह वाह। उबेद कहते हैं साबुन बेस्ड ऑप्शन है बॉस जी, हाँ जी बिल्कुल आप साबुन इस्तेमाल कीजिए, जो लोग क्रीम नहीं लगा पाते वो साबुन और फेस वॉश की जाने आइए। और आपके लिए वाइट एज की लवली क्रीम भी है क्योंकि ये एक फेयरनेस क्रीम है जिसका इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्रीम है, आप मेरे कहने पर लगा कर देखिए आपको मजे आ जाएंगे।

अच्छा तो किशोर भाई कहते हैं टॉपिक कहती जी इंसान वट रेस्ट करण जो टाइम न हुजे हु तमाजे हर शो में 2 घंटा सिर्फ तमाजे शो ते तवज्जो दे इनका वधिक मतलब ही केड़ो हुंदो।

इहो मतलब ई त न चइबो न, इहो त प्यारो माण्हू चइबो। ऐं मोह तूं आहीं बाबा, ई तव्हांजो कुर्ब आहिनि। अलाह अलाह, मां केतिरो मतिलब शुक्रिया अदा कयां, मूं वटि लफ़्ज़ न आहिनि मिलंदा मूंखे। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करती हूं अब्दुल रज़ाक भाई आपको। वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो वासा भाई। दीदार अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। पोस्ट को लाइक और शेयर करें, आज मुझे लोग काफी ज्यादा नजर आए और मुझे लाइक जो है ना वो कम नजर आ रहे हैं, तो लाइक करें जिन लोगों ने।

अच्छा सना वाला बिरोही हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, बहुत दिनों के बाद शामिल हो रहा हूँ जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद सलमान कहते हैं, ये टॉपिक मैं मतलबी हूँ, मेरी मतलब मेरा मतलब है कि काश आज ही, हाँ भाई ये मतलब तो नहीं कह सकते इसको, चले कोई बात नहीं। और लुबना हमारी साथ ही, वालेकुम अस्सलाम लुबी, कहती सिडू जानी मैं भी आपके साथ साथ हूँ, तमाम बेहतरीन शो, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी लुबी।

0: अच्छा ए एम अंसारी इंडियन गाने नहीं चल पाते हैं भाई।
1: Body on TikTok, call me round the clock, there will be no hesitation, no one to misguide, always on time, girl, we don't need a
0: तो कोई पाकिस्तानी और सिंधी गाने की फरमाइश कीजिए जरा। हाँ अंग्रेजी होना चाहिए, अरबिक होना चाहिए, तुर्किश होना चाहिए, रशियन होना चाहिए, और भी बहुत सारे गाने हैं जो कि आप फरमाइश कर सकते हैं बस इंडियन को छोड़ के। सो आपका हमारा शो है ये जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हम आपके साथ मौजूद होते हैं पूरी पूरे 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। प्रोग्राम में जनाब YTH & D Skin Beauty शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड D Skin Beauty प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, अरे भाई कीजिए ना, ये क्या बात हुई भला। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाइए और इस्तेमाल करते जाइए और डायल करते जाइए 03 1 5 7 9 9 5। लेते हैं यहाँ पर न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यू जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड इन कीप लिसनिंग YTH & D Skin Beauty शो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: बस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो, मीरपुर खास मटियारी, सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताइए। अगर आप अभी तक सोच रहे हैं तो इतना मत सोचिए, जनाब इस्तेमाल करिए। और अगर आप अपनी करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 03-15-799-0595। ये नंबर आपकी आसानी के लिए है, आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी पर परचेज कीजिए। इसी के साथ साथ आप लोगों को पहले मैंने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, सो अभी आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इतनी सी बात है जो कि आप लोगों ने जाननी है कि जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है। डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है और वाइटामिन ई बीड्स के साथ तैयार किया गया है। माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है इसके अंदर जनाब। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इससे परफेक्ट प्रोडक्ट आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिल सकता। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, किसी भी प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, तो उसके अंदर ये चीज आप देखा करें कि वो प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए है या नहीं। क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो वो ऑल स्किन टाइप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हुई, नॉर्मल हुई, कॉम्बिनेशन टाइप हुई या किसी भी तरह की आपकी स्किन हो तो उसके ऊपर आप इजीली जो है ना वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सके। तो जल्दी जल्दी से आप सारे लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो नंबर आपको पहले से बता चुकी हूँ जिसके ऊपर आप रापता करके जो है ना इजीली अपने एरिया में अवेलेबल करा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम बात करें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है जनाब ये आप लोगों की जिल्द को जो है ना खूबसूरत बनाती है, आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करती है और जनाब इस तरीके से इसे तैयार किया गया है कि एक मयारी ब्यूटी क्रीम है जो आपकी जिल्द की जो नमी है ना वो आपकी जिल्द की नमी को फराहम करती है, चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखती है। उसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं रोजाना डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आपकी जिल्द जो है वो उसके अंदर अगर बेरोनकी आ चुकी है या फिर आपकी स्किन जो है वो काफी डल हो चुकी है तो आपकी स्किन जो है वो तरोताजा हो जाएगी, आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक मजे की बात है कि जब आप सिर्फ दो रातें इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना जो ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो दो रातें आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, फिर आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आपकी जल्द जो है वो चमकदार हो जाएगी, आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स वो खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पर एक्ने का प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्किन की जो है ना वो केयर करती रहेगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे आप किस तरीके कार को फॉलो करके, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे, ये एक नाइट क्रीम है तो जाहिर सी बात है रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। तो जनाब डी स्किन फेस वॉश भी आप इस्तेमाल करेंगे और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आप लोगों की स्किन पर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है अगर डिहाइड्रेट हो चुकी है, आपके चेहरे की स्किन रूखी सूखी लग रही होती है तो आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों के चेहरे पर जितने मसाले वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपने डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल लाजमी करना है। और फेस वॉश तो जाहिर सी बात है आप दिन में कितनी भी मर्तबा लगाइए, कोई भी इसके अंदर जो है ना इस तरह की चीज नहीं है कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। तो फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए डी स्किन।

0: वॉश, उसके बाद आपने डी स्किन क्रीम जो है अपने चेहरे पर अप्लाई करनी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे और आप ग्लो करती रहे और खूबसूरत होते रहे। इसी के साथ साथ जो है ना, मैं आप लोगों की कुछ कॉल्स पिक करूंगी, क्योंकि ये वाला जो लिंक होता है वो कुछ कॉलर्स के नाम होता है। तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0333221322 and 88। कुछ कॉल्स पिक कर लेते हैं। ओके जी, सो हम यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल है उनकी जाने पाते हैं। तो ये फर्स्ट कॉल ड्रॉप हो गई मुझसे ही शायद, सॉरी। ओके, सो हम नेक्स्ट कॉल की जाने पाते हैं, देखते कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम अदी,
0: के रस सगड़ा
1: अदी आप कुर्बान अली खास के लिए में बोला गो तो आज गुलाम खास के लिए लग जल्लो मरिया।
0: ओके, ता डेली कॉल छ कना आयो भा, मता के चाहिए ना तो रोज रोज कॉल न करना कयो
1: बाबा। डेली कॉल करा तो आवाज बनवाए तो ये प्रोग्राम मता ये समझी दिए माशाल्लाह चाहे जो कप न मिले जी तो प्रोग्राम बुदा दे मते पूरे पे कर कोन दिने प्रोग्राम बुदा मते सब को तक तो बजी तो ना।
0: हां रे, मस्को अनो मस्को अनो।
1: आई सीट क्यों को ना आया, अभी ना सीट हो जाए ना हर कलाम रे
0: जी
1: हो जाए ना हो जाए।
0: चलो सीटी हो जाएगी ना से मुके यो बताए तो तमा अज जी टॉपिक ते छा चवंदा।
1: टॉपिक पर बुदा जो
0: टॉपिक अज जी दौर में ता के छा तो लगे केर मतलब या। अच्छा अलग छा चयव। ओके दा, ता जो आवाज कट जे तो आई डेली डेली कॉल न करना कयो, डाडी गलत गाल हुंदी आ। मैं ता के छयो आ ना आई उन खा अलावा जको आ तो कॉलिंग नंबर आ है 0332132322 and 88। नेक्स्ट कॉल दिसो ता के रस सगड मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यो चाय बला। ओके, सो नेक्स्ट कॉल दिसो ता केर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। के रस सगड मौजूद आ। ओके, लाड़काने का तुम्हारा कॉल किया, ये गाल समझ में आई मुझे बुलाया प्रोग्राम बुधो प्यास आंजो। ओके अदा जी जी, ता थोड़ी जगह सही थी पियो ता जो आवाज कट जे तो डाडो। हां ही अचे तो बुधायो ला छापे चो। जी जी, केड़ो कलाम बुधंदा? चलो ठीक है, कलाम समझ में कौन आयो। किते एड़ी जगह ते बी करी कॉल कना के जति तमा जो आवाज सही इंदो जे। ठीक है, कॉलिंग नंबर आ है 0332132322 and 88। नेक्स्ट कॉल इसो केर मौजूदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज लगे तो वरी नेटवर्क जो इशू। हेलो हेलो, हां
1: जी, खाना बेना ठीक है?
0: हां अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक भाई इस सगड मौजूद है?
1: जी जी बिल्कुल, इशू असा दे अचण दा इंशाल्लाह सॉल्व थी लो।
0: सफा हाने ता जो आवाज जड़ो मन तो अचे।
1: हां ठीक है पुत्र,
0: सफा ठीक ठीक मजे में। ता बताया खुश आयो सफा?
1: अल्लाह पाज लखे एहसान दुआऊं करी मैं रब जी। सॉरी पुत्र, तेरी बुदा पियो
0: जी,
1: लाइट आई तो ता जो एफएम में गुम थी।
0: अरे ये छो भला, लाइट ते सही हलन गुरजे ना गुमती हो। चलो मुखे फारूक भाई आवाज कट जी गयो वरी ता जो लगे तो वरी लाइट अची वही ता दे। जी जी, सफा सफा ये टॉपिक पे तमा छा चवंदा? आवाज कटे तो फारूक भाई। हेलो हेलो, आवाज कट जी तो सो कॉल से को मुखे ड्रॉप करनी पई। आई ता केड़ी एड़ी जगह ते बी करे कॉल कर जते आवाज थोड़ो सही इंदो जे। आवाज पेना सही है पर सफा वरी पो विचते थोड़ो खराब थी वे। सो कॉल तमा करी सको तो कॉलिंग नंबर आ है 0332132322 and 88। दिसु था केर असा सगड मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके आवाज ता जो कट जे तो मुजा भा। हेलो जी जी, मुख्य लगे तो अज अस कॉल्स न वी सी एक डी सही कॉल अचन थी वे डी सागो चिरमिर कॉल में लगो पो। सो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो नेटवर्क वाले ना एक दिन हमें कॉल्स का दे रहे हैं दूसरा दिन नहीं दे रहे, तो हम भी शायद ऐसी ट्रिक को जो ना वो फॉलो करेंगे। और इसी के साथ साथ जो है ना वो प्रोग्राम में ना मेरे पास एक गाना है तो वो जरा हम गाना लगाते हैं। और जी आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है. व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे हैं और मजीद खूबसूरत होते जा रहे हैं. अच्छा, तो मैंने आज आप लोगों से पूछ लिया कि आप मुझे बताइए कि आज के दौर में आपको क्या लगता है कौन मतलबी है.

ओके जी, सो तव्हां इस्तेमालु कयो पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम कयो पिया नी, मूंखे ॿुधायो अगरि तव्हां नथा इस्तेमालु कयो त बाबा तव्हां इस्तेमालु कयो छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेको आहे न वाइटमिन ई बीड्स आहिनि, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन सां तयारु कई वई आहे, डॉक्टर जी निगरानी में तयारु थियल आहे. ऐं जनाब सिर्फ़ ॿिनि रातिनि जे इस्तेमाल में तव्हांखे ॾींदी सफ़ा वी आई पी रिज़ल्ट. सो तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी, तव्हां बि थी वञो सुहिणा सुहिणा, प्यारा प्यारा, मिठा मिठा.

बहुत ही प्यारा गाना आप इंजॉय करें. साथ साथ हमारे पास ही कुछ पैनल के मैसेजेस हैं, वो पढ़ लेते हैं. और इसी के साथ साथ टाइम की बड़ी किल्लत होती है हमारे पास. मीरपुर खास से अब्दुल्ला बहर हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी. व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, क्या बात है अब्दुल्ला भाई, आपको वेलकम करते हैं. बशीर लिगारी हमारे साथ है, गोठ मीर खान लिगारी. वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, की आयो सिस्टर तुम्हारी सफा भलिया तामदा की आयो. और ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम आरजे सिद्रा ए बी रिंद फ्रॉम नवाबशाह. प्लीज सॉन्ग लगाइएगा खबर थी मुझे तोखा सवा सिंगर मास्टर मंजूर. ओके मैं कोशिश करूंगी आपका गाना सुनेंगे. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. और ये हमारे साथ हैं जी अच्छा नाम लिखा करें अपना पैनल के ऊपर जब भी आप मुझे मैसेज करें तो. और साइमा मीर कहती है सलाम अलैकुम माशाल्लाह माय बेस्ट आरजे सिद्दीक की आले शो मस्त मस्त है. टॉपिक वो शैतान है जो ऐसा करवाता है, इंसान तो बेस्ट होता है ना बाबा. या गलत गाला यानी मानू है जेगो एडो कुछ कन पिया तो ये शैतान कराए तो मानू रुको भी है तो कोने को आए बाबा मानू पान वडो शैतान आज जो दौर में. और साइमा मीर कहती है सिद्रा निगत नाज प्ले करी, निगत नाज हलायू था आज जरूर सोनी जिलाए. और ये मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम आज सिद्रा आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, बताओ आप कैसी हैं, हम आपको दिल से वेलकम करते हैं. इमरान अली बिरोही भाई लाड़काना से मैं सुन रही हूं, क्या बात है इमरान भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं. सजाद अली जमाली है सिटी नवाब शाह, शो इज नाइस सॉन्ग प्ले कीजिएगा मुमताज मोलाई. ओके मैं कोशिश करती हूँ मुमताज मोलाई लगाएंगे. थैंक यू आप सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं. बिल्कुल जी आप लोगों के साथ बातें करते हैं, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए गाने लगाते हैं. लेकिन यहाँ पर टाइम बचाते हैं जरा, हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं. तो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. सुनती रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए.

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. अगर ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइएगा. और इसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साथ साथ डायल करते जाइएगा 03 15 799 059.

यानी सोनो भी सोनो आ की ना हो जे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जो करे पियो अगर तमा भी सोना थिन चाहियो था तो तमा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा अगर तमा के डी स्किन फेस वॉश भी मिली रहो है सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो डी स्किन फेस वॉश लगायो पाने खूबसूरती के चमकाए आई हमेशा जले खूबसूरत थी वने उनका अलावा जको असे सगत मौजूद है सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली ए लाडकाने वाला भी सो जना बिल्कुल प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में ऐसा मौजूद है सो तमा के चोंदा भली कार खुश आमदी तमा जो मोहब्बत

अच्छा सजाद अली जमाली भासा के जेको ने गाने जी फरमाइश कई हुई सो असा ही गानो बुदोसी ना अलावा बियो गानो असा जी लिस्ट में मौजूद है जेको निगत नासी आवाज में आए। आई ही ना गाने जी फरमाइश असा के साइम अमीर कई है।

ऐसे ही हकीकत है। जी अब्दुल्ला महर भाई असां सां गॾु मौजूद आहे। अब्दुल्ला महर भाई, तव्हां वाइटिश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो पिया, सो मोहबतूं आहिनि सोणे भाजू। उन खां अलावा असां सां गॾु आहे, मतिलब ई माण्हू खां उहो खुलियो दुश्मन भलो, छो जो अंदरि बंदि पोष माण्हूअ खां अलाह पनाह में रखे तव्हांखे ऐं असांखे। आमीन। अलाह ॾिनो बंबरो भाई हमारे साथ फ्राम नबीदाद बंबरो खां, अलाह ॾिनो भाई तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया। और ये हमारे साथ हेलो सिद्रा मक़सूद मलाह हमारे साथ जी, मक़सूद मलाह आपको खुश आमदीद कहते। और हमारे साथ है शोनी, कहती आपकी जान में भी आ गई आपके साथ। अच्छा शोनी प्यारी प्यारी, आप जरा अपना ख्याल रखिए।

वाह वाह वाह वाह, राजा खान भाई के थे सिस्टर। बड़े वक्त में पता चल, बुरे वक्त में पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। या बिल्कुल तमाम सही गाल कही राजा भाई। बस भाई कहते अदी से जो जवाब मतलब ही वो होंदो आहे जेको पंहिंजो कम कढी पोए वरी बीहर ॾिसंदो न आहे। ओ या गाल बिल्कुल सही चयव। उन खां अलावा किशोर भाई कहते अदी मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे कराची में क्रीम तूं पाण खणी अच। चलो मां ईंदमि त खणी ईंदमि। उन खां अलावा ये हमारे साथ हैं जी आदिल कहते हैं कि जवाब मतलब ही केर आहे, मतलब जी गाल कंदो हमेशा जडे हुन जो कम हुजे त भाव भाव चवंदो आहे, कम मुकियो त सलाम भी न वठंदो आहे ऐं सिर्फ़ फ़ाइदो ॾिसंदो आहे। हू तव्हां सां दोस्ती दिलि सां कोन कंदो आहे, मतलब सां कंदो आहे। हिन लाइ तव्हांजी क़ीमत कोन्हे, हुन जो कम क़ीमती आहे। मुश्किल में न मिलंदो अव्हांखे, इहा हक़ीक़त आहे। जॾहिं तव्हांखे हुन जी ज़रूरत हुजे त बेज़ारी आहियां चवंदो आहे, पर जॾहिं हुन खे कमु हुजे त राति 2 वॻे बि फ़ोन कंदो आहे, शुक्र न कंदो आहे। तव्हां केतिरी बि महिनत कयो हुन लाइ घटि आहे, हू हमेशह वधीक घुरंदो आहे, पर पाण कॾहिं कोन ॾींदो। ऐं चौथा कूड़ो कूड़ो वॾो आहे, मतिलब ही जा वाइदा आसमान ते हूंदा आहिनि पर ज़मीन ते कॾहिं न। मुंह ते मिठो दिल में कारो, सिंधी चवणी आहे। मतिलब ही दोस्त खुलियल दुश्मन खां बि वधीक ख़तरनाक आहे। सो मतिलब ही खां बचो, असल दोस्त उहो आहे जेको बग़ैर मतिलब जो पंहिंजो थिए, बग़ैर मतिलब जे पंहिंजो थिए। इहा बिल्कुलु हक़ीक़त जी ॻाल्हि कई तव्हां। सफ़ा VIP VIP पॉइंट तव्हां असांजे साम्हूं रखियो। अॼु खां पोइ असांखे ख़बर पइजी त मतिलब ही कहिड़ा आहे। अच्छा दीदार अली बिरोही भाभी असां सां गॾु मौजूद आहे, केती आ गया जी, खुश आमदी। ऐं जेके जेके माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कनि पिया उहो ॿुधाइनि बाबा त असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए करे सोणा थी विया आहियूं। ऐं सोणा कीअं न थियो बाबा, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी आहे। ऐं सिर्फ़ 2 रातूं तव्हां इस्तेमालु कंदा ऐं ॾिसंदा पाण खे। पाण खे ॾिसंदा त सफ़ा ईअं सोणा चिकना ऐं सफ़ा चिमकंदा वतंदव। सो मर्द मायूं सभी इस्तेमालु कनि पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे जनाब इहो वाइटमिन ई बीट्स फार्मुलेशन सां जेको आहे न तयारु थियल आहे। सो तव्हां लाज़मी हिन खे ट्राए करे जो नाइट क्रीम आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि इस्तेमालु करे ॾिसणो आहे। सो इहे ॿई चीज़ूं तव्हां साथ में लॻायो, ॾिसंदा तव्हां त तव्हांखे केॾो ज़बरदस्त जेको आहे न रिज़ल्ट मिली रहियो आहे। सो तव्हां इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, नथी मिले त पोइ तव्हां डायल कयो 03 15 7 9 0 5 9 5।

वाह वाह वाह जो गानो बुधो सी निगत नाजी आवाज में यो गानो असांजी लिस्ट में मौजूद आहे जेको आहे जनाब खुदा और मोहब्बत ओ एस जी कल हिकड़ी अदे के चयो सी हलाईंदासीं सो उहो कल अॼु आहे असां लायो आहे गानो ऐं गानो ॿुधंदासीं हुन खां अलावा जेको आहे सो तव्हां सां गॾु मौजूद आहे फेसबुक वारा माण्हू पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा वञो अब्दुल रज़ाक भाउ सां गॾु मौजूद आहे सो मोहबतूं आहिनि प्यारे भाउ जूं बस भाई तव्हांखे प्रोग्राम वणे पियो सो थैंक यू मीर बेवस कहते हैं क्या ख़रीदा क्या बेचा आगे इस बाज़ार में जाते जाते कुछ हकीकत तो बता बाजार की वाह जी वाह नाइस पोएट्री हज़ार खान जतोई भाई सां गॾु मौजूद आहे वालेकुम असलाम हज़ार भाउ ख़ुश आहियो नी सफ़ा अच्छा मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैदराबाद से आप शो सुन रहे हैं कहते हवा आज ही चल रही है और आपका शो भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है थैंक यू जी और हजार भाग तुम एडो वडो कमेंट कर हुआ है चौथा योर टॉपिक आंसर दी, लोग अक्सर सच्चाई इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उन्हें किसी अंजाम का डर होता है या फिर वो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं कभी कभी तो बस

ओके इमरान भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और विलेज मामा जो कमल निकरण का पोए गुम थी वे ओ या गाल है। अच्छा ये माजूदी वाले तुम सलाम शेब पास जमाली नवाब शाह से तमाशा के ज्वाइन कर हुआ है सुमो और बतू प्यारे भाजू आई अगर तब वहां भी जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर हुआ तो बाबा सुठी गाल है इस्तेमाल करना रहो अगर नपया कर रहे हो इस्तेमाल तो बाबा जल्दी इस्तेमाल करने स्टार्ट कयो छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाँ तवां जे एरिया में भी अवेलेबल थियन चाहे थी उन के लिए तवां के डायल करनो है 03 15 799 0595।

दर्दे दिल कह रही है कि चंदा कहीं ना कहीं हम भी मतलबी हो जाते हैं, हम सब मतलबी देखा जाए तो. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी. कोशिश में ये होती है कि उनको लास्ट में वो सेट किया जाए ताकि प्रोग्राम का जो टेम्पो है ना वो स्टार्टिंग में ना टूट जाए, तो इसी वजह से बस जो सैडी वाले गाने होते हैं वो थोड़ा लास्ट में लगा लेते. तो सैडी नहीं इनको कह सकते हैं, इनको थोड़ा मतलब जो ना लाइट कह सकते हैं. और अनवर भाई कहते हैं टॉपिक आंसर जब आप पर कोई बुरा वक्त आता है या आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार होता है. वो आपके साथ, वो आपका साथ देने के लिए अचानक बहुत बिजी हो जाते हैं. ओ या गर्ल. और नाजिक अली हमारे साथ है, कहते हेल्प कुनल तुझी ले गुड शो. थैंक यू नाजिक. अच्छा अलीजा भी हमारा शो सुन रही है, बहुत शुक्रिया अलीजा. अच्छा आशिक खास के लिए भाई हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम आशिक खास के लिए भाई. अच्छा ॾिसो हाणे लख ॾेई करे अगरि बिना मतिलब वारा माण्हू खपनि त पोइ बिना मतिलब वारा त थिया ई न छो त हुन लख वरिता आहिनि. सम्झो ॻाल्हि खे सही आहे.

वालेकुम अस्सलाम शहबाज जमाली नवाब शाह से हमारा शो सुन रहे हैं, आपका शो बेहतरीन चल रहा है। थैंक यू सो मच शहबाज जमाली भाई, आपको वेलकम करते हैं। और नखा अलावा प्रोग्राम आए जनाब वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वने पे तमा ताई वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जी तावन सा आई रोजाना तमास से गड मौजूद हुंदा है जनाब, रोजाना तमास जो प्रोग्राम बुधंदा है 1 बजे 3 बजे ताई। और मतलबी लोग यहां मुर्तजा बलोच हमारे साथ थी मीरपुर खास, क्या बस इतना सा ही मैसेज कर दिया और बहुत शुक्रिया मुर्तजा भाई

ओके जी, जिन्हें हम से मिलना गवारा ही नहीं, हमसे मिला ना करे, ये लाइन इस सॉन्ग की मतलब लोगों के लिए है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी लाइनें हैं वैसे। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त भी हुआ चाहता है, तो मुझे लगा था ए मंसारी आप सो चुके हैं। चले कोई बात नहीं, आप हमारे साथ साथ मौजूद हैं, और वो तमाम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन लोग हमारे साथ मौजूद रहे, प्रोग्राम में पूरा साथ दिया, प्रोग्राम में पूरे पूरे मौजूद रहे, आप लोगों का इनशाला शुक्रिया। और कहीं कोई गलती हो गई हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए माजरत। पर इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाकात मुझे सुभाणे थियण वारी आहे, सो मोकिलाणी नाहे बाबू, सलामत सलामत, अलाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुत्समा वारी वफाकी वजीर अताउला तारड़ चवाए तो समूरी दुनिया कबूल कयो तो पाकिस्तान अमुन ला किरदार अदा कयो अज कौमी झंडे की इज्जत है मैशत भी दुरुस्त रस्ते ते गामजन है जिते मुल्क की इज्जत की गाल हुए उते पैंजी जात की इज्जत महसूस करण घुर्जे। वफाकी वजीर कौमी असेंबली में बजट सेशन के खिताब करे चयो तो बजट ते तनकीद एहतजाज अपोजिशन जो हक है पर हाकारी कदमन की वाखाण थियण घुर्जे। समूरन शोबन से मुशावरत बाद बजट तैयार कई वही हर तबके के फायदो पहुंचाया वो पीटीआई वार IMF के खत लिखा तो पाकिस्तान के कर्ज न डो वे IMF के लिखल खत तारीख जो हिस्सो आन शहबाज शरीफ डी रात मेहनत न करे हा जी आज कई काश अवा उन वक्त ही मिसा के जमूरियत वाली आज मनो हा मोटरसाइकिल सवार फायरिंग बजरा भारती व्या गोट मीर मोहम्मद जलबाणी लाड़े वथियारबंदन इंजन के गोलियो हणी कतल कर छो मकतूलन की 45 साल लालू जोयो ए 55 साल राजा जोयो तौर सुप लाश अस्पताल मुंतकिल। वाटसन चवण है जतोई बिरादरी हथियारबंदन नौजवान के कतल किया है अग में बिरादरी के एक अहलकार के कतल किया वो हो। सेवण में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर जो सीसीटीवी ऑपरेटर कराची में फुर दौरान मजम्मत के कतल कराची के सौराब गोट वे इलाके में हथियारबंदन नौजवान शाहिद सोलंगी के फुर मजम्मत गोलियों हणी कतल कर छो इतला के घर में रोजराड़ो मची पो। कुंडरी वेझो अदड़ो शख्स जो अंब के वण में फाहु लगल लाशत सोरहां वाटरवर्ड सिखू कोलिए जो वण में फाहु लगल लाशत किया वो इतला पुलिस वाके वाले हंध पहुंची लाश के अस्पताल मुंतकिल किया। पुट किरशन पुलिस जो चवण है तो वालद के गुजरियल दिन नशो करण का मना किया तो उन कावड़ की आबकात किया। पीर जो गोट में शहर जो बदमल बदमनी खिलाफ थाने अग्न धरणो नारेबाजी शहर तो पीर जो गोट ए भर पासे में बदमनी बदम सब मानू गैर महफूज हैं कतल ए फुर जहा वाक्या मामूल बढ़ी वन हुकूमत अमन बहाल कराए। सिंध में गर्मी मथा वरी बिजली की लोडशेडिंग अवाम लाए अजाब कर छो मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा बीरपुर माथुर जो मुख्तलिफ गोठन के रवासन जो बिजली की बंदिश खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों सिजावत जुड़न जो में बिजली की मेन लाइन जो तारू चोरी थियण और बिजली की बंदिश खिलाफ शहर जो धरणो उलर लाल में बिजली की डिघी लोडशेडिंग ए वापदा इंतजामिया के नाजायजन खिलाफ शहर जो एहतजाज शहर ए व्यापार ने बिजली की दफादू लोडशेडिंग खिलाफ स्टेशन रोड बंद कर छो शहर तो बिजली की बंदिश सबब पीण के पानी जो बहरान पैदा थी वह है कारोबार भी मुतासर थी रो है बिना देर बिजली डिघी लोडशेडिंग जो खात्मो आने शहर के अजाब का बचाए वे। आयसन में पानी की शदीद खोट बरकरार आबादगार तबको सरापा एहचाज बणियल टिकराटो के मुबारकपुर ए बंबड़ी मैडर में पानी खोट खिलाफ आबादगार हारन जो एहतजाजी मुजाहरों सन में माजन तालके के छछर पंपिंग स्टेशन के बंदिश खिलाफ आबादगार हारन एहतजाज किया अगवाण पानी की खोट सबब पोखियल फसल सड़ी रहा जानवर भी उज वगे मरी रहा पानी की खोट खत्म कर आबादगार परेशानी का बचाए वे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीके इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ हाने अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327 99

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

लोगों ने IMF के लिखियल ख़त तारीख़ जो हिसो आहिनि। शहबाज़ शरीफ ॾींहुं राति महिनत न करे हा त मुल्क दिवालो थी चुको हुजे हा। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ॿीहर अपोज़िशन खे मिसाक जमूरियत जी आछ कई, काश अवां उन वक़्तु ई मिसाक जमूरियत वारी आछ मञो हा। नायब वज़ीर आज़म मिसाक डार जो मिस्र ऐं तुर्क परॾेही वज़ीरनि सां फ़ोन ते राबितो, ख़िते जे तब्दील थींदड़ सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। परॾेही तर्जुमान मूजिबि ॻाल्हि ॿोल दौरान अमरीका ईरान विच में मफ़ामत लाइ हाकारी अकबराई जी अकबराई सां अमन जो रस्तो खुलण जी उमीद ज़ाहिर कई। अॻवाननि जो थींदड़ अकबराई जे हवाले सां राब्ते में रहण ते इतफ़ाक़।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मेरे YouTube चैनल नदीम अब्बास खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।

0: मेरे YouTube चैनल नदीम अब्बास खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए आने वाले गीतों को सुनने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइए।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88
0: क्रीम असली ग्लो हर निया जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। 1

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM।
1: 50,000 नन के 300 अरब रुपए जा बिना ब्याज कर्ज फराम करने जो ऐलान। बजट दस्तावेज मूजिब जरी मशीनरी लाइ 5 अरब रुपया सब्सिडी लाइ मुख्तस। 12 एकड़ का घट जमीन मालिकन के 1500 रुपया फी एकड़ सब्सिडी फराम कई वेंदी। भाण जा अघ घट रखण लाइ भाण कंपनियों के 20 अरब रुपये जो पैकेज दिनों वेंदो। मौसमियाती तब्दीलिया के मोह दियण जरी शोबे के नुकसान का बचाने लाइ आलमी बैंक की मदद से 20 करोड़ डॉलर मुख्तस किया वह। कौमी असेंबली में नए माली साल के बजट से बहस। अपोजिशन मेंबर्स पारा मुल्क अंदर वधंदड़ महंगाई से जाब्तो आणण जो मुतालबो। MNA शाहिद खटक जो चवण हो तो मुल्क में घाटे टोड़ महंगाई है। तेल जे अघ तारीख के बुलंद तरीन सतह से मौजूद हैं। विचोले तबके के इस्तेमाल जो शयूं भी महंगी थी वयू हैं। घट आमदनी वारा परेशान हैं। उस्मान बादैनी चयो तो बलोचिस्तान में मौजूद मैदनियात से पाकिस्तान जो कर्ज खत्म थी सके तो। गवादर पोर्ट से 25 साल का हले पो उतां जे माण्हुनि खे पीअण जो साफ पाणी भी नथो मिले। सुत समा वारे फाकी वजीर अता तारड़ चयो आहे त समूरी दुनिया कबूल कयो त पाकिस्तान अमन लाइ किरदार अदा कयो। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे। मैशत बि दुरुस्त रस्ते ते आहे। जिते मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे त उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूसु करणु घुरिजे। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट इजलास खे ख़िताबु कंदे वधीक चयो त बजट ते तनक़ीद ऐं एहतिजाज अपोज़िशन जो हक़ आहे, पर हाकारी क़दमनि जी वाखाण बि थियणु घुरिजे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयारु कई वई।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान के बयान से सूरत हाल वाजे न थी सकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है तो ईरान से अमन मुआदे से सयूं अज थी मुआदे से सयूं थन्दे ही आपना हुरमत सभी लाइ खुली वो सकून थे बाद मुनासिब वक्त से एटमी मवाद की बाकियात भी हासिल कर वासी। ईरानी फौज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अज अमन मुआदे से सयन वाली दावा रद्द कर छी। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स जो चवण है तो कें भी मुआदे से सयूं न कर बाबत आगाह कर चुका आयु। सदर डोनाल्ड ट्रंप सही वाली तकरीब पैंजी सालगिरह के कर 14 जून से करण चाहे तो। ट्रंप उन मौके के अलामती अहमियत दई पैंजी जाती मशहूरी जो प्रोग्राम बढ़ाए रो है। रतो देरो वेझो हथियारबंदन की मोटरसाइकिल सवारन ते फायरिंग बजना मारजी वया। गोठ मीर मोहम्मद जलबाणी लाड़े वट हथियारबंदन बिन जणन के गोलियों हणी कतल कयो। मकतूलन जी 45 वरन जे लालू जोयो ए 55 वरन जे राजा जो सुजानप लाश अस्पताल मुंतकिल चवणा है त जतोई बिरादरी जे हथियारबंदन नौजवानन के कतल कयो आहे। रोड़ी में दरगाह सदरुद्दीन शाह वेझो हथाए लाश की रियाज चौहान तौर सुप नौजवान जो लाश फिटो करे वाके जा सीसीटीवी फोटेजिस मंजरियाम से अची वाया। फोटेजिस में अणजातल शख्स के नौजवान जो लाश सवारी में लाहण बाद गहलींदे ऐसी सकते तो। पुलिस मूजिब नौजवान सखर के इलाके थर्मल मिल रोड जो रवासी है। वारसन पारा नौजवान जो लाश थर्मल मिल रोड से रखी धरणो जवाबदार गिरफ्तार करने जो मुतालबो। वगण ए नौदेरो वेझो टे नीगर शाख ए कैनाल में वेंजे बुड़ी वया एक के बचाया वो। वगण वेझो गोठ खरी जा रवासी नीगर राबेल इशफाक मुगेरी शाख में वेंजे बुड़ी वया। गोठाणन 13 वरन के इशफाक के बचाए वरतो 12 वरन के राबेल जो लाश अथ। नौदेरो भरसा 6 वरन के मासूम नीगर दादू कैनाल में बुड़ी वो। गोठ साबुल जड़जो में मासूम नीगर फरहान शेख दादू कैनाल में बुड़ी वो लाश अथ। घर में को रामतल टंडो मोहम्मद खान में बुरड़ी शाह करीम वेझो नौजवान पुरस्कार नमूने फौत वारसन पारा कतल जो इल्ज़ाम लाश रखी धरणो। गोठ रहीम बख्श रिंदवासी 20 वरन जो मेहरबान रिंद पुरस्कार नमूने फौत थी वो। वारसन जो सजावल रोड से लाश रखी धरणो। वारसन जो चवण हो तो नौजवान के जहर दई कतल कयो वो जवाबदार के गिरफ्तार कयो वे। सिंध में गर्मी मथा वरी बिजली की लोडशेडिंग अवाम लाए अजाब बनाए छो। मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा हैदराबाद में मुस्लिम लीग फंक्शनल पारा बिजली की डिगी लोडशेडिंग खिलाफ प्रेस क्लब आयो अलामती भुख हड़ताल कर एहतजाज किया। मीरपुर मातिलो के मुख्तलिफ गोठन के रवासन जो भी बिजली की बंदिश खिलाफ एहतजाज। सजावल जोड़े जो में भी एहतजाज किया। मांझन के शहर पारा भी बिजली की लोडशेडिंग खिलाफ मंजूराबाद में एहतजाजी रैली कढ़ी वही। उडेरो लाल में भी बिजली की डिगी लोडशेडिंग खिलाफ एहतजाज। शहर व्यापार बिजली की हथरादू लोडशेडिंग खिलाफ स्टेशन रोड बंद कर छो। शहर जो चवण तो बिजली की बंदिश सब पीण के पानी जो बहरान है। कारोबार भी मुतासिर थी रो है। सिंध में पानी की शदीद खोट बरकरार आबादगार तबको सरापा एहतजाज बनल। टिकराटो के मुबारकपुर बंबली माइनर में पानी खोट खिलाफ आबादगार ने हारन पारा एहतजाजी मुजाहरो किया वो। सन में मांझन तालके के छछर पंपिंग स्टेशन की बंदिश खिलाफ आबादगार ने हारन जो एहतजाज। एहतजाज कंदड़ अगवान जो चवण हो तो पानी की खोट सब पोखल फसल सड़ी रहा है। जानवर भी उंज विघे मरी रहा है। नोटिस वरत वे।
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा एशिया जी सब खां वॾी मंछुर डंड सुकी वई, अख़्तियारनि नोटिस न वरितो। एम क्यू एम जे मुतालबे ते वफ़ाक पारां कराची ऐं हैदराबाद जे लाइ 25 अरब रुपियनि जो तरक़ियाती पैकेज ते इतफ़ाक़। NICVT जी मुफ़्त इलाज जे मॉडल खे मलीर ताईं वधायो वेंदो, वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह। गाढ़नि चांवरनि जे देस लाड़ पट में सख़्तु सो कहिड़ो, इंसानी हयातियूं ख़तरे में, फसल तबाह। हैदराबाद में समाजी तनज़ीम तरफ़ां ॿारनि खां मज़दूरी कराइण ख़िलाफ़ आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां सुरनि जे भठे ते कमु कंदड़ मज़दूरनि ऐं संदनि ॿारनि जे लाइ तक़रीब मुनक़िद। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध कहिड़नि मसइलनि खे मुंहुं ॾेई रही आहे। एशिया जे सभ खां वॾे में वॾी मंछुर डंड सुकी वई, पाणी न हुजण सबबि मंछुर डंड 2 किलोमीटरनि ताईं बंजर ज़मीन जहिड़ो ॾेख ॾियण लॻी आहे। गरिकल रिपोर्टनि मूजिबि मंछुर डंड में पाणी घटिजण सबबि मछीअ जो नसुल बि ख़तमु थी वियो आहे। मुहाणा बुख ऐं बदहाली वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर बणियल आहिनि। मंछुर डंड में पाणी घटिजण सबबि पाणी सतह 104 RL यानी 4 थी वई। मंछुर तोड़े भर पासे जूं ज़मीनूं बि बंजर थियण लॻियूं आहिनि। आबादगार फाका कशीअ में मुबतला थी विया। मंछुर जे 1,50,000 इंसानी आबादी पीअण तोड़े ज़रई पाणीअ खां महरूम थी वई आहे। पाणी माहिरनि जो चवणु आहे त एशिया जे वॾे में वॾी मंछुर डंड में पाणी न अचण सबबि सूरत हाल घंटे जोगी बणिजी वई आहे। पाणी जी शदीद खोट सबबि डंड लॻभॻि 2 किलोमीटरनि ताईं सुकी वई आहे, जंहिं करे आबी जीवत मुहाणनि ऐं मक़ामी आबादीअ जे रोज़गार खे सख़्तु ख़तरा वधी विया आहिनि। माहिरनि मूजिबि जेकॾहिं मंछुर डंड ॾांहुं पाणीअ जी फरहमी बहाल न कई वई त माहौलियाती तबाहीअ सां गॾु हज़ारे ख़ानदाननि जी मईशत बि मुतासिर थी सघे थी। मकामी माण्हू जो चवणु आहे त सिंध खे हथ सां बंजर बणायो वियो आहे। मंछुर डंड ॾिसूं सुकी वई आहे, हितां जे माण्हुनि खे कंगाल कयो वियो आहे, हथ सां मंछुर डंड खे सुकायो वियो आहे। हुकूमत खे फौरी क़दम खणण ऐं डंड खे बचाइण जे लाइ पाणी जी फराहमी यकीनी बनाइण जो मुतालबो कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ MQM पाकिस्तान जे मुतालबे ते कराची हैदराबाद जे लाइ तरक़ियाती पैकेज जी मंज़ूरी ॾियण ते रज़ामंदी ज़ाहिर करे छॾी। MQM पाकिस्तान जे वफ़द वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई, जंहिं में ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक़ ऐं जावेद हनीफ़ शामिल हुआ। मुलाक़ात दौरान वज़ीर आज़म सां गॾु इसहाक़ डार, राणा सनाउल्ला, एहसन इक़बाल, आज़म नज़ीर तारड़ ऐं अताउल्ला तारड़ पिणु मौजूदु हुआ। ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात में बजट तजवीज़ुनि, बलदियाती हुकूमतुनि बाबति तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल ऐं सिंध में गवर्नर जे मामले ते बि ॻाल्हियूं थियूं। ज़रियुनि जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म कराचीअ खां 20 अरब रुपियनि ऐं हैदराबाद जे लाइ 5 अरब रुपियनि जे तरक़ियाती पैकेज ते इतफ़ाक़ कयो आहे। ज़रियुनि मूजिबि हुकूमत MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल बाबति गॾिजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां ॻाल्हियुनि जी ख़ातिरी पिणु कराई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल जी हिमायत करे थो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवेस्क्यूलर डिज़ीज़ ऐं हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल मलीर जे विच में मुफ़ाहमती MOU ते सहियुनि जी तक़रीब जी सदारत कई, जंहिंजो मक़सदु मलीर ऐं आसपास जे इलाइक़नि जे रहाकुनि लाइ दिलि जे मर्ज़नि जी जामिया ख़िदमतुनि जी फ़राहमी आहे। उन भाङे वारे तहत हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल दिलि जे हंगामी मरीज़नि जी जाच, मरीज़नि खे मुस्तहकम करण ऐं इलाज खां पोइ जी निगहदाश्तूं ख़िदमतूं फ़राहम कंदो, जॾहिं त एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ऐं दिलि जे ऑपरेशन जहिड़नि जदीद इलाज जी ज़रूरत वारनि मरीज़नि खे हिकु मखसूस रेफरल निज़ाम ज़रिए NICVT मुंतकिल कयो वेंदो। उन तावन में टेलीकार्डियोलॉजी सपोर्ट, माहिरनि जी मुशावरत ऐं तिबी नीम तिबी पैरामेडिकल अमले जी सलाहियतुनि में इज़ाफ़ो पिणु शामिल आहे। साईं जी तक़रीब वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद थी, जंहिं में सिहत वारे वज़ीर डॉक्टर अदरा फज़ल पेचू हो, वॾे वज़ीर जी सेक्रेटरी आसिफ़ जमील, सिहत सेक्रेटरी ताहिर सांगी, NICVT जे क़ाइम मक़ाम एसोसिएट एग्ज़ीक्यूटिव डॉक्टर असद बलाल अवाण, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद, हायर एजुकेशन कमीशन HEC जे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक रफ़ी,
ऐं ॿियनि सीनियरनि इख़्तियारनि शिरकत कई। सिज वॾे वज़ीर ख़िताब कंदे चयो त सिंधु हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतुनि ताईं रसाईअ खे वसत ॾियण ऐं जान बचाईंदड़ दिलि जे मरीज़ जे इलाज खे आवाम जे घरनि जे वेझो पहुचाइण जे लाइ पुरज़म आहे। हुन चयो त NICVD मुफ़्त ऐं आलमी मयार जी दिलि जे इलाज जी फराहमी ज़रिए लखे माण्हुनि लाइ उमेद जी अलामत बणिजी चुको आहे। वॾे वज़ीर सिहत खाते ऐं NICVD इंतिज़ामिया खे हिदायत कई त मुआदे ते असराइती अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे ऐं अहिड़नि मरीज़नि खे मज़बूत रेफरल ऐं मुंतकिली जो निज़ाम तयारु कयो वञे जिन खे दिलि जे जदीद इलाज जी ज़रूरत हुजे। सिंध जे सामुंडी पटीअ वारे पुछड़ीअ वारे ज़िले ठटे में पाणीअ जी शदीद खोट संगीन सूरत हाल इख़्तियारु करे वई आहे, जंहिं सबबु ज़राई ज़मीन फसल सख़्तु मुतासिर थी रहिया आहिनि। ठटे ज़िले जे मुख़्तलिफ़ वाहन शाखुनि ऐं बिराजनि में पाणीअ जी फरहमी इंतिहाई घटिजी वञण करे सारियालो फसलु सुकी ठोठ बणिजी वियो आहे, जॾहिं त केतिरनि ई वाहन ऐं शाखुनि में पाणीअ जी जाइ ते वारी उॾामण जा मंज़र ॾिसण में अची रहिया आहिनि। केतिरनि ई ॻोठनि में रहवासी पीअण जे पाणीअ जे लाइ मेलनि जा मुफ़ासिला तय करण ते मजबूर आहिनि, जंहिं सबबु रोज़ानी ज़िंदगी बि सख़्तु मुतासिर थी रही आहे। ॿिए तरफ़ आबादगार हारियुनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त कोटड़ी बिराज खां हेठां ई इलाइक़नि ताईं पाणीअ जे मुनसिफ़ाणे

खे यकीनी बणायो वञे। डाउन स्ट्रीम में पाणीअ जी फराहमी बहाल कई वञे ऐं मुतासिर इलाइक़नि खे हंगामी बुनियादनि ते रिलीफ फराहम कयो वञे त जीअं ज़राई तबाही ऐं इंसानी बुहरान खे रोके सघिजे। वफ़ाक़ी हुकूमत ईंदड़ माली साल जे बजट में वफ़ाक़ी मुलाज़मन, हथियारबंद फ़ौज ऐं पेंशनरनि लाइ रिलीफ पैकेज जो ऐलान करे छॾियो आहे। फाइनेंस बिल मूजिबि नए पी स्केल में 2022 जा 15% ऐं 2025 जा 10% एडाक रिलीफ बुनियादी पघार में ज़िम कया वेंदा। सभिनी वफ़ाक़ी सरकारी मुलाज़मनि खे हलंदड़ बुनियादी पघार रनिंग बेसिक पे ते 7% एडाक रिलीफ अलाउंस ॾिनो वेंदो, जॾहिं त ग्रेड 1-22 ताईं जे मुलाज़मनि के डिस्पेरिटी रेडिकेशन अलाउंस 2026 बुनियादी पगार जे 15% जे बराबर मिलंदो। फाइनेंस बिल मूजिब कन्वेंस अलाउंस में मौजूदा रकम खां 50% वाध कई वेंदी। सिविल आर्म फोर्स लाइ कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस 7,000 मां वधाए 30,000 रुपया कयो वियो आहे, जॾहिं काबीना डिवीजन जे ऑफिसरनि ऐं अमले जी स्पेशल पे 6,000 मां वधाए 20,000 रुपया माहवार कई वई आहे। उन खां सवाइ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जे स्केल 1-22 जे मुलाज़मनि जो स्पेशल अलाउंस 10% मां वधाए 50% कयो वियो आहे। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 6,000 मां वधाए 10,000 रुपया कयो वियो आहे, जॾहिं त सभिनी पेंशनर जे बेस लाइन पेंशन में 7% वाध कई वई आहे। ही समूरा रिलीफ उपाउ 1 जुलाई 2026 खां लागू थींदा। हैदराबाद में समाजी तंज़ीम तरफ़ां ॿारनि खां मज़दूरी कराइण ख़िलाफ़ आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां सिरुनि जे बठनि ते कम कंदड़ मज़दूरनि ऐं संदन ॿारनि जे लाइ तकरीब मुनक़िद कई वई। सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स स्पॉक पारां टंडो हैदर वेझो हिकु तकरीब मुनक़िद कई वई। तकरीब में सिरुनि जे बठनि ते कम कंदड़ मज़दूरनि ऐं ॿारनि वॾे तादाद में शिरकत कई। तकरीब में ॿारनि पारां चाइल्ड लेबर जे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ इस्लाही टेबलोज, स्टेज ड्रामा, कलाम ऐं मुख़्तलिफ़ रांदियुनि में हिसो वरितो वियो। तकरीब में स्पार्क जे अॻुवाणनि काशिफ बजीर, वाजिद जागीरानी, शौकत सरेवाल, सहरुनिसा ऐं ॿियनि शिरकत कई। अॻुवाण जो चवणु हुयो त सिरुनि जे बठनि ते केतिरा ई ख़ानदान गुरबत ऐं कर्ज़नि में फासी विया आहिनि। स्पार्क मूजिब ही मुआशी दबाउ जबरी ॿारनि जी मज़दूरीअ जो वॾो सबबु आहे, जिते ख़ानदान पंहिंजे ॿारनि खे बि ख़तरनाक कम में मजबूर तालीम ऐं बुनियादी हक़नि खां मज़दूरनि में ज़हनी दबाउ ऐं मायूसी पैदा करे रही आहे। हिननि इस्लाही थिएटर ऐं टेबलो ज़रिए भठे मज़दूरनि खे सदन हक़नि, जबरी मज़दूरीअ जे ख़तरनि ऐं ॿारनि जे तालीम जी अहमियत बाबति आगाही ॾिनी।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध पाकिस्तान जो मुआशी ज़रई ऐं सामूंडी लिहाज़ खां इंतिहाई अहम सूबो आहे। 2026 में सिंध खे हिकु ई वक़्तु केतिरनि ई चैलेंजनि ऐं मौक़नि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। पाणीअ जो बुहरान सभ खां वॾो मसइलो। सिंध हिन वक़्तु पाणीअ जे खोट जे संगीन सूरत हाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। आपाशी वाहन में पाणीअ जी घटिताई सबबि ख़ासि तौर ते हेठाई सिंध जे आबाद घरनि में ॻणिती वधी वई आहे। ज़रई पैदावार ख़ासि करे चांवर, कमंद ऐं ॿिनि फसलनि ते मनफ़ी असर जा ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि। ताज़नि रिपोर्टुनि मूजिबि पाणीअ जी खोट सिंध ऐं बलोचिस्तान जे केतिरनि ई इलाइक़नि में मुआशी ऐं समाजी मसइला वधाए रही आहे। मईशत ऐं वापार। सिंध पाकिस्तान जे मुआशी मर्कज़ तौरु अञा बि अहम हैसियत रखे थो, जिते कराची मुल्क जो सभ खां वॾो सनती ऐं वापारी शहर आहे। पाकिस्तान जी मईशत में 2025-2026 दौरान वाध जो रुझान ॾिठो वियो आहे, जंहिं जा मुस्बत असर सिंध जे सनत ऐं ख़िदमतुनि वारे शोबे ते बि पिया आहिनि। ज़रई ऐं सनती सरगर्मियुनि में बहितरीअ जा इशारा मिलिया आहिनि, जेतोणीक पाणीअ जी खोट हिकु वॾो ख़तरो बरक़रार आहे। मौसमियाती तब्दीली ऐं गर्मी। सिंध ख़ासि तौर ते सख़्त गर्मीअ जे लहर खां मुतासिर थी रहियो आहे। कराची ऐं ॿियनि ॾाखिणनि इलाइक़नि में 44 डिग्री सेंटीग्रेड खां वधीक गर्मी रिकॉर्ड कई वई आहे। माहिरनि मूजिबि मौसमियाती तब्दीलीअ सबबि गर्मीअ जूं लहरूं वधीक शदीद ऐं बार बार थियण लॻियूं आहिनि, जंहिं सां सिहत, पाणी ऐं बिजली जी फराहमीअ ते दॿाउ वधी रहियो आहे। सिहत जे शोबे में कुझु बहितरीअ जा इशारा मौजूदु आहिनि। ख़ासि तौर ते वॾनि इस्पतालुनि जी गुंजाइश ऐं बजट में वाध जे हवाले सां बरहाल साफ़ पाणीअ जे खोट, गर्मी ऐं माहौलियाती मसइलनि सबबि केतिरनि ई इलाइक़नि में सिहत जा चैलेंज बरक़रार आहिनि। कुझु रिपोर्टुनि मुताबिक़ सिंध जे केतिरनि इलाइक़नि में पाणी जी मयारु

0: रेडियो जो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलह निगहबान।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगे मां गुलाब खान बेण।

सिंगर राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा एशिया जी सब खां वडी मंछुर डंड सुकी वई अख्तियार नोटिस न वरतो एमक्यूएम जे मुतालबे ते वफाक पारां कराची ए हैदराबाद जे लाए 25 अरब रुपए जो तरक्याती पैकेज ते इत्तफाक NICVT जी मुफ्त इलाज जे मॉडल के मलीर ताईं वधायो वेंदो वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह गाढ़नि चांवरनि जे देस लाड़ पट में सख़्त सो कहिड़ो इंसानी हयातियूं ख़तरे में फसल तबाह हैदराबाद में समाजी तनज़ीम तरफ़ां ॿारनि खां मज़दूरी कराइण ख़िलाफ़ आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां सिरुनि जे भठे ते कमु कंदड़ मज़दूरनि ऐं संदनि ॿारनि जे लाइ तक़रीब मुनक़िद स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध कहिड़नि मसलनि खे मुंहुं ॾेई रही आहे एशिया जे सभ खां वॾे में वॾी मंछुर डंड सुकी वई पाणी न हुजण सबबि मंछुर डंड 2 किलोमीटर ताईं बंजर ज़मीन जहिड़ो ॾेख ॾियणु लॻी आहे गरिकल रिपोर्टनि मूजिबि मंछुर डंड में पाणी घटिजण सबबि मछीअ जो नसल बि ख़तमु थी वियो आहे मुहाणा बुख ऐं बदहाली वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर बणियल आहिनि मंछुर डंड में पाणी घटिजण सबबि पाणी सतह 104 RL यानी 4 थी वई मंछुर तोड़े भर पासे जूं ज़मीनूं बि बंजर थियणु लॻियूं आहिनि आबादगार फाका कशीअ में मुबतला थी विया मंछुर जे 1,50,000 इंसानी आबादी पीअण तोड़े ज़रई पाणीअ खां महरूम थी वई आहे पाणी माहिरनि जो चवणु आहे त एशिया जे वॾे में वॾी मंछुर डंड में पाणी न अचण सबबि सूरत हाल घंटे जोगी बणिजी वई आहे पाणी जी शदीद खोट सबबि डंड लॻभॻि 2 किलोमीटर ताईं सुकी वई आहे जंहिं करे आबी जीवत मुहाणनि ऐं मक़ामी आबादीअ जे रोज़गार खे सख़्त ख़तरा वधी विया आहिनि माहिरनि मूजिबि जेकॾहिं मंछुर डंड ॾांहुं पाणीअ जी फरहमी बहाल न कई वई त माहौलियाती तबाहीअ सां गॾु हज़ारे ख़ानदाननि जी मईशत बि मुतासिर थी सघे थी मकामी माण्हू जो चवणु आहे त सिंध खे हथ सां बंजर बणायो वियो आहे मंछुर डंड ॾिसूं सुकी वई आहे हितां जे माण्हुनि खे कंगाल कयो वियो आहे हथ सां मंछुर डंड खे सुकायो वियो आहे हुकूमत खे फौरी क़दम खणण ऐं डंड खे बचाइण जे लाइ पाणी जी फराहमी यकीनी बनाइण जो मुतालबो कयो वियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ MQM पाकिस्तान जे मुतालबे ते कराची ऐं हैदराबाद जे लाइ तरक़ियाती पैकेज जी मंज़ूरी ॾियण ते रज़ामंदी ज़ाहिर करे छॾी MQM पाकिस्तान जे वफ़द वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई जंहिं में ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी फारूक सत्तार मुस्तफ़ा कमाल अमीनुल हक़ ऐं जावेद हनीफ़ शामिल हुआ मुलाक़ात दौरान वज़ीर आज़म सां गॾु इसहाक डार राणा सनाउल्ला एहसन इक़बाल आज़म नज़ीर तारड़ ऐं अताउल्ला तारड़ पिणु मौजूदु हुआ ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात में बजट तजवीज़ुनि बलदियाती हुकूमतुनि बाबति तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल ऐं सिंध में गवर्नर जे मामले ते बि ॻाल्हियूं थियूं ज़रियुनि जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म कराचीअ खां 20 अरब रुपियनि ऐं हैदराबाद जे लाइ 5 अरब रुपियनि जे तरक़ियाती पैकेज ते इतफ़ाक़ कयो आहे ज़रियुनि मूजिबि हुकूमत MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल बाबति गॾिजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां ॻाल्हियुनि जी ख़ातिरी पिणु कराई आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल जी हिमायत करे थो सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवेस्क्यूलर डिज़ीज़ ऐं हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल मलीर जे विच में मुफ़ाहमती MOU ते सहियुनि जी तक़रीब जी सदारत कई जंहिंजो मक़सदु मलीर ऐं आसपास जे इलाइक़नि जे रहाकुनि लाइ दिलि जे मर्ज़नि जी जामिया ख़िदमतुनि जी फ़राहमी आहे उन भाङे वारे तहत हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल दिलि जे हंगामी मरीज़नि जी जाच मरीज़नि खे मुस्तहकम करणु ऐं इलाज खां पोइ जी निगहदाश्तूं ख़िदमतूं फ़राहम कंदो जॾहिं त एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ऐं दिलि जे ऑपरेशन जहिड़नि जदीद इलाज जी ज़रूरत वारनि मरीज़नि खे हिकु मखसूस रेफरल निज़ाम ज़रिए NICVT मुंतक़िल कयो वेंदो उन तावन में टेलीकार्डियोलॉजी सपोर्ट माहिरनि जी मुशावरत ऐं तिबी नीम तिबी पैरामेडिकल अमले जी सलाहियतुनि में इज़ाफ़ो पिणु शामिल आहे साईं जी तक़रीब वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद थी जंहिं में सिहत वारे वज़ीर डॉक्टर अज़रा फज़ल पेचू हो वॾे वज़ीर जी सेक्रेटरी आसिफ़ जमील सिहत सेक्रेटरी ताहिर सांगी NICVT जे क़ाइम मक़ाम एसोसिएट एग्ज़ीक्यूटिव डॉक्टर असद बलाल अवाण प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद हायर एजुकेशन कमीशन HEC जे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक रफ़ी
ऐं ॿियनि सीनियरनि इख़्तियारनि शिरकत कई। सिज वॾे वज़ीर ख़िताब कंदे चयो त सिंधु हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतुनि ताईं रसाईअ खे वसत ॾियण ऐं जान बचाईंदड़ दिलि जे मरीज़ जे इलाज खे आवाम जे घरनि जे वेझो पहुचाइण जे लाइ पुरज़म आहे। हुन चयो त NICVD मुफ़्त ऐं आलमी मयार जी दिलि जे इलाज जी फराहमी ज़रिए लखे माण्हुनि लाइ उमेद जी अलामत बणिजी चुको आहे। वॾे वज़ीर सिहत खाते ऐं NICVD इंतिज़ामिया खे हिदायत कई त मुआदे ते असराइती अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे ऐं अहिड़नि मरीज़नि खे मज़बूत रेफरल ऐं मुंतकिली जो निज़ाम तयारु कयो वञे जिन खे दिलि जे जदीद इलाज जी ज़रूरत हुजे। सिंध जे सामूंडी पटीअ वारे पुछड़ीअ वारे ज़िले थटे में पाणीअ जी शदीद खोट संगीन सूरत हाल इख़्तियार करे वई आहे, जंहिं सबबु ज़रई ज़मीन फसल सख़्त मुतासिर थी रहिया आहिनि। थटे ज़िले जे मुख़्तलिफ़ वाहन शाखुनि ऐं बिराजनि में पाणीअ जी फराहमी इंतिहाई घटिजी वञण करे सारियालो फसल सुकी ठोट बणिजी वियो आहे, जॾहिं त केतिरनि ई वाहन ऐं शाखुनि में पाणीअ जी जाइ ते वारी उॾामण जा मंज़र ॾिसण में अची रहिया आहिनि। केतिरनि ई ॻोठनि में रहवासी पीअण जे पाणीअ जे लाइ मेलनि जा मुफ़ासिला तय करण ते मजबूर आहिनि, जंहिं सबबु रोज़ानी ज़िंदगी बि सख़्त मुतासिर थी रही आहे। ॿिए तरफ़ आबादगार हारियुनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त कोठड़ी बिराज खां हेठाईं इलाइक़नि ताईं पाणीअ जे मुनसिफ़ाणे विच खे यकीनी बणायो वञे, डाउन स्ट्रीम में पाणीअ जी फराहमी बहाल कई वञे ऐं मुतासिर इलाइक़नि खे हंगामी बुनियादनि ते रिलीफ फराहम कयो वञे त जीअं ज़रई तबाही ऐं इंसानी बुहरान खे रोके सघिजे। वफ़ाक़ी हुकूमत ईंदड़ माली साल जे बजट में वफ़ाक़ी मुलाज़मन हथियारबंद फ़ौज ऐं पेंशनरनि लाइ रिलीफ पैकेज जो ऐलान करे छॾियो आहे। फाइनेंस बिल मूजिबि नए पी स्केल में 2022 जा 15% ऐं 2025 जा 10% एडाक रिलीफ बुनियादी पघार में ज़िम कया वेंदा। सभिनी वफ़ाक़ी सरकारी मुलाज़मन खे हलंदड़ बुनियादी पघार रनिंग बेसिक पे ते 7% एडाक रिलीफ अलाउंस ॾिनो वेंदो, जॾहिं त ग्रेड 1-22 ताईं जे मुलाज़मन के डिस्पेरिटी रेडिकेशन अलाउंस 2026 बुनियादी पघार जे 15% जे बराबर मिलंदो। फाइनेंस बिल मूजिब कन्वेंस अलाउंस में मौजूदा रकम खां 50% वाध कई वेंदी। सिविल आर्म फोर्स लाइ कॉन्सिटेंट अटेंडेंट अलाउंस 7,000 मां वधाए 30,000 कयो वियो आहे, जॾहिं त काबीना डिवीज़न जे ऑफिसरनि ऐं अमले जी स्पेशल पे 6,000 मां वधाए 20,000 माहवार कई वई आहे। उन खां सवाइ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जे स्केल 1-22 जे मुलाज़मन जो स्पेशल अलाउंस 10% मां वधाए 50% कयो वियो आहे। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 6,000 मां वधाए 10,000 कयो वियो आहे, जॾहिं त सभिनी पेंशनर जे बेस लाइन पेंशन में 7% वाध कई वई आहे। ही समूरा रिलीफ उपाउ 1 जुलाई 2026 खां लागू थींदा। हैदराबाद में समाजी तंज़ीम तरफ़ां ॿारनि खां मज़दूरी कराइण ख़िलाफ़ु आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां सिरुनि जे बठन ते कमु कंदड़ मज़दूरनि ऐं संदन ॿारनि जे लाइ तकरीब मुनक़िद कई वई। सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स स्पॉक पारां टंडो हैदर वेझो हिकु तकरीब मुनक़िद कई वई। तकरीब में सिरुनि जे बठन ते कमु कंदड़ मज़दूरनि ऐं ॿारनि वॾे तादाद में शिरकत कई। तकरीब में ॿारनि पारां चाइल्ड लेबर जे ख़िलाफ़ु मुख़्तलिफ़ इस्लाही टेबलोज़, स्टेट ड्रामा, कलाम ऐं मुख़्तलिफ़ रांदियुनि में हिसो वरितो वियो। तकरीब में स्पार्क जे अॻुवाणनि काशिफ बजीर, वाजिद जागीरानी, शौकत सरेवाल, सहरुनिसा ऐं ॿियनि शिरकत कई। अॻुवाण जो चवणु हुयो त सिरुनि जे बठनि ते केतिरा ई ख़ानदान गुरबत ऐं कर्ज़नि में फासी विया आहिनि। स्पार्क मूजिबि ही मुआशी दबाउ जबरी ॿारनि जी मज़दूरीअ जो वॾो सबबु आहे, जिते ख़ानदान पंहिंजे ॿारनि खे बि ख़तरनाक कम में शामिलु करण ते मजबूर थियनि था। अहिड़ी सूरत हाल ॿारनि खे तालीम ऐं बुनियादी हक़नि खां महरूम करे रही आहे ऐं मज़दूरनि में ज़हनी दबाउ ऐं मायूसी पैदा करे रही आहे। हिननि इस्लाही थिएटर ऐं टेबलो ज़रिए भठे मज़दूरनि खे सदन हक़नि, जिबरी मज़दूरीअ जे ख़तरनि ऐं ॿारनि जे तालीम जी अहमियत बाबति आगाही ॾिनी।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध पाकिस्तान जो मुआशी ज़रई ऐं सामूंडी लिहाज़ खां इंतिहाई अहम सूबो आहे। 2026 में सिंध खे हिक ई वक़्तु केतिरनि ई चैलेंजनि ऐं मौक़नि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। पाणीअ जो बुहरान सभ खां वॾो मसइलो। सिंध हिन वक़्तु पाणीअ जे खोट जे संगीन सूरत हाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। आपाशी वाहन में पाणीअ जी घटिताई सबबि ख़ासि तौर ते हेठाई सिंध जे आबाद घरनि में ॻणती वधी वई आहे। ज़रई पैदावार ख़ासि करे चांवर, कमंद ऐं ॿिनि फसलनि ते मनफ़ी असर जा ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि। ताज़नि रिपोर्टुनि मूजिबि पाणीअ जी खोट सिंध ऐं बलोचिस्तान जे केतिरनि ई इलाइक़नि में मुआशी ऐं समाजी मसइला वधाए रही आहे। मईशत ऐं वापार। सिंध पाकिस्तान जे मुआशी मर्कज़ तौरु अञा बि अहम हैसियत रखे थो, जिते कराची मुल्क जो सभ खां वॾो सनती ऐं वापारी शहर आहे। पाकिस्तान जी मईशत में 2025-2026 दौरान वाध जो रुझान ॾिठो वियो आहे, जंहिं जा मुस्बत असर सिंध जे सनत ऐं ख़िदमतुनि वारे शोबे ते बि पिया आहिनि। ज़रई ऐं सनती सरगर्मियुनि में बहितरीअ जा इशारा मिलिया आहिनि, जेतोणीकि पाणीअ जी खोट हिकु वॾो ख़तरो बरक़रार आहे। मौसमियाती तब्दीली ऐं गर्मी। सिंध ख़ासि तौर ते सख़्त गर्मीअ जे लहर खां मुतासिर थी रहियो आहे। कराची ऐं ॿियनि ॾाखिणनि इलाइक़नि में 44 डिग्री सेंटीग्रेड खां वधीक गर्मी रिकॉर्ड कई वई आहे। माहिरनि मूजिबि मौसमियाती तब्दीलीअ सबबि गर्मीअ जूं लहरूं वधीक शदीद ऐं बार बार थियण लॻियूं आहिनि, जंहिं सां सिहत, पाणी ऐं बिजली जी फराहमीअ ते दॿाउ वधी रहियो आहे।

जमी तालीमी सहूलतुनि जो फ़र्क़ु नुमाया आहे। माहिरनि तालीम जे मयार ऐं स्कूलनि में हाज़िरी वधाइण ते ज़ोर ॾिनो आहे। ज़रात सिंध पाकिस्तान जे ज़रई पैदावार में अहम हिसो रखे थो। चांवर, कणक, कमंद ऐं कपह सिंध जूं अहम फ़सुल आहिनि। ज़रात में वाध जा इम्कान मौजूदु आहिनि, पर पाणीअ जी खोट ऐं मौसमियाती तब्दीली मुस्तक़बिल लाइ वॾा ख़तरा सम्झा वञनि था। सिंध जी मौजूदा सूरत हाल में टे वॾा मसला नुमाया आहिनि। पाणी जी खोट ऐं दरियाई वसीलनि बाबति ख़दशा, मौसमियाती तब्दीली ऐं सख़्त गर्मी। तालीम ऐं सिहत जे शोबे में बुनियादी सहूलतुनि जी ज़रूरत। साॻे वक़्तु कराची जे वापारी सरगर्मियुनि, ज़रई इस्लाहातुनि ऐं सनअती बुनियादनि सबबि सिंध वटि तरक़ीअ जा मनसूबा ऐं मौक़िया पिणु मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं पाणी, तालीम, सिहत ऐं माहौलियाती मसइलनि ते मौसर पॉलिसियूं इख़्तियारु कयूं वञनि त सिंध मुल्क जी तरक़ीअ में वधीक अहम किरदारु अदा करे सघे थी।